ये आकाशवाणी है FMN 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त वर्ष 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आज शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा पणिहारी और 6:05 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे। लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर का समय रहेगा 6:20 पर। शाम 7 बजे खेतीबाड़ी कार्यक्रम होगा किसान भाइयों के लिए और 7:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा होगी और 8:15 पर सुनिएगा लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। रात्रि 9 बजे सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे। आज सुबह 9:10 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा 9:20 पर और लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे 9:40 पे। गाने पुराने जमाने के इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज सुबह 10 बजे और 10:30 पर आप सुनिएगा गाने नए तराने नए कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से और राज्य के पांचों विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के 3500 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत किया जाएगा। बजट 2026-27 की घोषणा के तहत स्वीकृत इन परियोजनाओं से आवागमन अधिक सुगम होगा और दूर दराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से किसानों, युवाओं, उद्यमियों और आमजन को सुविधा मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी। राज्य के 84 शहरों में नगरीय आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर करीब 9500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के पांचवें चरण के तहत होने वाले इन निर्माण कार्यों की जानकारी देने के लिए आज से संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। ये संवाद कार्यक्रम 11 अगस्त तक चलेंगे। इस दौरान प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया जाएगा। गौरतलब है कि पांचवें चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू हो गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस प्रयोगशाला में आयुर्वेदिक दवाओं की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इससे नकली और मिलावटी दवाओं की पहचान आसान होगी और जांच के लिए दूसरे राज्यों की प्रयोगशालाओं पर निर्भरता समाप्त होगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रयोगशाला को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यहाँ यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमीटर सहित 6 अत्याधुनिक मशीनें स्थापित है। आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट का भी पता चलेगा। शुरुआत में किडनी, लीवर, हड्डियों व पाचन तंत्र से जुड़ी दवाओं की जांच होगी। भारी वस्तुओं जैसे शीशा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम के अवशेषों का विशेष परीक्षण किया जाएगा। कुछ महीनों में विश्वविद्यालय की अपनी प्रयोगशाला को भी इससे जोड़ा जाएगा। आगे चलकर कैंसर, आर्थराइटिस और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी दवाओं की भी जांच होगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाजार से दवा नमूनों की नियमित जांच की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में 587 दवा नमूनों की जाँच की गई। जाँच में 579 नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप मिले, जबकि 8 नमूने अमानक पाए गए। इनमें एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और अन्य दवाएं शामिल हैं। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जयपुर से रामेश्वरम के लिए दूसरी विशेष ट्रेन कल रवाना की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने डहर के बालाजी रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से जयपुर संभाग के 970 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा पर गए हैं। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 30 अधिकारियों और कर्मचारियों का दल भी उनके साथ गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा कराई जा रही है।
2: ये मैं मानती हूँ बहुत बड़ा काम हुआ है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये वरिष्ठ जन है, इनके बारे में आजकल कोई नहीं सोचता, परिवार जन भी नहीं सोच पाते, सब इतने व्यस्त रहते हैं के बारे में सरकार ये कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी हमारे जो तीर्थ स्थल है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे जाएंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था और अगर आप देखेंगे इस ट्रेन में भोजन की व्यवस्था है, फिर बीच में अगर कहीं पर स्टॉपेज होगा तो वहाँ रहने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं ताकि वो सुरक्षित अपने स्थान पे अपनी अपने तीर्थ पे पहुंचे, वहां दर्शन करें और वापस सुरक्षित पहुंच जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे नई रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। संभावना जताई जा रही है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मेडिकल परामर्श समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। उम्मीदवार कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा। जो उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं उन्हें 18 से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में मदद करने के लिए चरण दर चरण ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 1800-102-7637 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य के 5 विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत कनिष्ठ अभियंता के 869, कनिष्ठ लेखाकार के 371 और कनिष्ठ सहायक तथा वाणिज्यिक सहायक द्वितीय के 765 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयन के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट और हेल्पलाइन पर उपलब्ध गई है। जैसलमेर में युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार से जोड़ने के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप संवर्धन कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से स्टार्टअप इंडिया के तहत आयोजित इस कार्यशाला में युवाओं, विद्यार्थियों, नवाचारकर्ताओं और संभावित उद्यमियों को स्टार्टअप से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कार्यशाला के माध्यम से जिले में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान स्टार्टअप इंडिया एवं आईआईटी मान्यता प्राप्त प्रक्रिया, राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, वित्तीय सहायता, निवेश के अवसर, व्यवसाय मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया, नवाचार प्रबंधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल तकनीकों के उपयोग तथा व्यवसाय विस्तार की रणनीतियों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योगों के लिए रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू श्रेणियों का संशोधित वर्गीकरण लागू कर दिया है। मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि ये वर्गीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उद्योगों को पर्यावरणीय स्वीकृतियों और सहमति प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि संशोधित सूची में सीमेंट, डेयरी, अस्पताल, होटल, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, निर्माण परियोजनाओं और औद्योगिक पार्क सहित कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब जोधपुर में शुरू की गई है। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से और राज्य के 5 विद्युत निगमों में 2005 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राज गुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राज गुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिनहिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हांका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:20 हुए हैं। समय हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम भक्ति संगीत का। तो आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और ये है वंदना कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: पानी में मीन प्यासी, मन सुन सुन आवे हासी। जी हाँ, ये भक्ति रचना थी अनूप जलोटा के स्वर में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए सतीश देहरा की आवाज में ये भक्ति रचना।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद। और इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले सुनिए छोटू सिंह और आशा प्रजापति की गाई ये रचना।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं घोरबंद कार्यक्रम में गणपतलाल डांगी और साथियों की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमासोनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये गाना हमने लिया है फिल्म लम्हे से। इसे गाया है लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों ने। संगीत से संवारा है शिव हरि ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

श्रोताओं, ये गाना हमने लिया है फिल्म मर्यादा से। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आशा भोसले को फिल्म मौसम में। इस गीत को संगीत दिया है मदन मोहन ने और बोल लिखे हैं गुलजार ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नाम फिल्म का ये गाना, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। आइए अब सुनते हैं संगीत फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा है संतोष आनंद ने।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म महबूब की मेहंदी से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म के इस गीत के साथ ही गाने पुराने ज़माने के कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए।
1: You know that thing must be 100 years old.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, इस संदेश से पहले आपने सुना था फिल्म दिल धड़कने दो का गाना, जिसे गाया था प्रियंका चोपड़ा फरहान अख्तर ने। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और गीत को संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। आइए अब सुनते हैं दिलवाले फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, कनिका कपूर और सिद्धार्थ महादेवन ने। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं ऑल इज़ वेल फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है मिथुन और तुलसी कुमार ने। गीत ओरिजिनली तो लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, लेकिन इस फिल्म में लिखा है अमिताभ वर्मा ने। संगीत दिया है आनंद मिलंद ने। तो आइए सुनते हैं ऑल इज़ वेल फिल्म का ये गाना।

लीजिए श्रोताओं, आप कार्यक्रम के आखिर में सुनिए टू स्टेट फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आकृति कक्कड़ और शाहिद मालिया ने। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए, FM 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम की शुरुआत अभी आपने सुनी पंडित भीमसेन जोशी के गाए इस ख्याल गायन के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: बहादुर शाह जफर का कलाम अभी आपने सुना। गायिका थी रूना लैला और संगीत पंडित गुलाम कादिर का था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और उनकी हमनवा की गाई ये कव्वाली। इसे तविश महमूद ने लिखा और धुन बनाई निसार ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक गजल, शायर सबा अफगानी और संगीत इकबाल का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं किशोरी अमोनकर की आवाज में उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: शोभा गुर्टू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और खव्वाल की आवाजों में हजरत अमीर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफी कव्वाली थी जो हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शीद यानी अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में भी अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अभिनेत्री काजोल और जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम इन दोनों अभिनेत्रियों को देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने वो गीत चुने हैं जो काजोल और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की फिल्मों के हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीत।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: लता मंगेशकर और कुमार सानू, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, मैं मिला, तू मिली, मैं मिला, दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे।

अनु मलिक की संगीत निर्देशन में अभी आपने देव कोहली का लिखा ये गीत सुना। आवाजें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की। फिल्म का नाम था बाजीगर।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इसे समीर ने लिखा है और तर्ज जतिन ललित की है।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। बोल समीर के हैं और धुन जतिन ललित की है।

खुशी कभी गम का ये गीत। अगला गीत जतिन ललित की संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा हुआ, युगल स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है फना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
3: जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं आशा भोंसले और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीतकार समीर हैं और संगीतकार जतिन ललित हैं।
4: अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोसले और उदित नारायण को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना, आवाज रूना की, संगीत दिया है AR रहमान ने और गीत लिखा है अब्बास ने।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: मस्ती फिल्म का दो गाना अभी आपने शान और स्नेहा पंत की आवाजों में सुना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। आरबीआई ने रेपो दर में बदलाव नहीं करते हुए 5.25% पर ही बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह भी किया। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की आज 7वीं सालगिरह है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन संसद ने अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को खत्म कर दिया था जिनके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था। इससे पहले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था। ये एक अस्थायी प्रावधान था जिसने राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने NCR में अतिरिक्त नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगर बोर्डों और शहरी स्थानीय निकाय को गंभीर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की शक्तियां प्रदान की हैं। इनमें अलवर, भरतपुर, भिवाड़ी और नीमराणा सहित NCR के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि इसका उद्देश्य धूल नियंत्रण उपायों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है ताकि निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से होने वाले कण प्रदूषण को कम किया जा सके। नागौर जिले के डेगाना उपखंड में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक ही दिन में 1,00,000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है। भैरुंदा और डेगाना पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों ने जन सहभागिता से ये लक्ष्य पूरा किया है। अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में 4,000 पौधे लगाए गए। मुख्य कार्यक्रम सुरपुरा, निम्बुला बिस्वा और पिरामिड वैली स्थित तेजाजी हरसोर परिसर में आयोजित हुआ। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बरसात हुई। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीग जिले के रारहे में सबसे अधिक 66 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से उत्तर पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 7 और 8 अगस्त को भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित राजस्थान समान सिविल संहिता UCC पर आमजन से ऑनलाइन सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। राजस्थान के मूल निवासी निर्धारित पोर्टल या QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने नागरिकों से अधिक संख्या में इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। प्राप्त सुझावों पर विचार कर प्रस्तावित विधेयक को और अधिक व्यापक, प्रभावी और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FMN 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

जी हाँ, सावन आ गया है और ये गीत तो महेंद्र कपूर और साथियों ने फिल्म बंधन के लिए गाया था। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई सावन आ गया है और हम इससे बेखबर कैसे हो सकते हैं? देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने सावन की बौछारों से भीग गए हैं। कुछ श्रोता तो लिख रहे हैं कि हालांकि उनके शहर में अभी बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रमों के जरिए महसूस करेंगे कि सावन की कुछ फुहारें उनके भीतर महसूस हो। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश में फिर एक बार सावन के भीगे मौसम की बात है तो गानों से जरूर तरबतर हो जाएंगे। सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि धरती और आकाश के मिलन का महाउत्सव, ये चातक की प्रतीक्षा, कृषक की आशा और विरहियों की व्याकुलता का सघन मेघ है। जब ग्रीष्म की तपन से झुलसी वसुधा पर स्वाति की बूंदे गिरती है तब मिट्टी से सौंधी महक उठती है। ये महक प्रकृति के नव श्रृंगार की पहली घोषणा है, इसलिए ये हृदय का राग है, मिलन का बंधन है, मानवीय भावनाओं के चरमोत्कर्ष का काल है और सावन एक शाश्वत अनुभूति है। बहुत सुंदर भाव आपने अपनी इबारत में भेजा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन के इस

महीने में सुरीले सफर की खूबसूरत इबारत का सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि हमारे मन का सबसे कोमल एहसास है। सावन की फुहारों में प्रेम का संदेश है, झूलों की पींगों में बचपन की हंसी है, मोर के नृत्य में प्रकृति का उल्लास है और पपीहे की पुकार में विरह की मधुर टीस भी है। फिल्मी गीतों में भी सावन कभी मिलन का बहाना बनकर आया तो कभी बिछड़ने वालों की आंखों में बरसता रहा। सुनेंगे इस संगीत में सावन में सुरीले सफर में उन सदाबहार गीतों को जिन्होंने बरसात की हर बूंद को सुरों का मोती बना दिया। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज इबारत आती थी मगर ऐसी न थी। चेतक पक्षी को जैसे सावन की एक बूंद का इंतजार रहता है, हमें भी सुरीला सफर की बागडोर कौन संभाल रहा है उस पोस्ट का इंतजार रहता है। क्या बात है, सावन आए और विविध भारती पर इससे जुड़े गीत न बजे ऐसा संभव ही नहीं। सावन केवल एक ऋतु नहीं, आशा विश्वास मिलन विरह और प्रतीक्षा का प्रतीक है। हमारे लिए सावन आए न आए, जिया जब झूमे सावन है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते कि आपकी आवाज मेरी आवाज सुरीला सफर को और सुरीला बना देती है। क्या बात है, सावन सिर्फ बारिश की बूंद नहीं लाता बल्कि मन में एक नई ताजगी भर देता है। जब सूखी धरती पर पहली बूंद पड़ती है तो सौंधी महक से हर कोना महक उठता है। पेड़ पर पड़े झूले, बादलों की गड़गड़ाहट और हरी भरी पत्तियां सब मिलकर जीवन में नए रंग भर देते हैं। आपने भी कुछ गीत चुने हैं जिनका जिक्र आपने किया है, तो देखना यह है कि आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या आपके गीत से मिलते हैं वो गीत। तो जब सुरीला सफर पर निकल ही चुके हैं, सावन आ ही गया है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। बताइए आपके आसपास कहीं झूला टंगा है किसी पेड़ की टहनी पर या घर में? बताइएगा क्या आपने झूला झूला इन दिनों? फटाफट लिखिएगा अपना एहसास, कितनी ऊंची पींगे बढ़ाई आपने ये भी बताइएगा।

लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बहू बेगम, इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धमाकेदार शुरुआत से लगता है आज सावन में ही भादो आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, यानी आप भी आनंदित हो रहे हैं और सावन में भीग गए हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत बहुत ही प्यारे होने वाले हैं क्योंकि सावन जो आ गया है विविध भारती के आंगन में। भाई, आपके आंगन में भी तो सावन आ गया है और सब श्रोता मिलकर मंदाकिनी जी के साथ मस्ती से आनंद लेने वाले हैं। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंधन फिल्म के महेंद्र कपूर जी की ये जो आवाज थी शानदार गाने से सावन की शुरुआत सुरीला सफर कार्यक्रम में हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली बार ये गीत सुनने को मिला है, सुरीला सफर में बज रहा है या बहुत लंबे से समय के बाद इस गीत को बजाया गया है, धन्यवाद देते हैं आप। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की सुरीली यात्रा अत्यंत सुखदायी लग रही है क्योंकि आज की विशेष कड़ी आपके द्वारा सावन में वर्षा की ठंडी ठंडी फुहार जैसे कर्णप्रिय गीतों से सजाई गई है। भाई, जब सावन का मौका है और सुरीला सफर है, हम और आप साथ हैं, मिलकर इस यात्रा पर निकले हैं, तो यकीनन जो सफर है वो सुरीला होना लाजिमी है, है ना। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना आकाश का मन हुआ कि चलो धरती से मिले, हाथ बढ़ाकर उसके स्पर्श की पावन अनुभूति का आनंद मैं भी लूं, अपने लंबे लंबे हाथ पानी की धार के रूप में फैलाएं और अंततः स्पर्श कर ही लिया, बस फिर क्या था, माँ तो माँ ही होती है। खुश हो हरा भरा श्रृंगार करके, अच्छा श्रृंगार करके झूमने गाने लगी और तब से वे दोनों हर साल मिलते हैं और इस मिलन के उत्सव को उनके साथ हम सभी झूम झूम कर मनाते हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बारिश रूपी झड़ी लगने वाली है, गीतों की बूंदों के रस में डूबे हुए स्नेहिल मंदाकिनी जी और सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूं। ये सच है कि ऋतु में सावन खूब भाता है, बचपना हो युवा हो या 50 से ऊपर, बारिश में भीगने का अपना आनंद होता है। हाँ, पर मन के भाव हर उम्र में अलग अलग हो सकते हैं, पर बारिश रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए, मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, बहुत अच्छे लगते हैं गीत सुनना। बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे बचपना हो चाहे युवावस्था हो या 50 के पार का हमारा मन हो, ये जो बारिश है, ये जो सावन है, ये जो मौसम है, हमें हर उम्र में उतना ही उल्लासित रखता है जितना हम हर वक्त रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी मौसम को किन अर्थों में लेते हैं। अच्छा, तो हमने आपसे पूछा था कि झूले पड़ गए हैं आपके घर आंगन में, भी झूले लग गए होंगे, किसी पेड़ की शाखा पर झूले टंग गए होंगे, क्या आपने झूले झूले हैं? अभी ढूंढते हैं आपके जवाब क्या आए। ये बताइएगा कि आपके शहर में सावन बरसा के नहीं, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे कि आपके शहर में बरसात हुई कि नहीं, हुई तो कितनी हुई, कब से हुई और आपने सावन का जो ये आनंद है लिया या नहीं। यह आपका मन सूखा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुरीला सफर में आज हमारी कोशिश यही है कि हम भीग जाएं तन मन से। यह आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आशीर्वाद, गुलजार साहब के बोल, वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेल कर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा कि नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब, जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही है, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहाँ तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफर में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहाँ सावन की बौछारें हमें भीगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे, भीगे हैं कि...

नहीं नहीं आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना? बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ?

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे, उसे करना बहुत जरूरी था, पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो न सबने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में, बस फिर क्या था हम लिखने लगे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि यह सावन हर साल आता है मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है, कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगा हुआ पन्ना है जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है।

सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना देता है। मोर नाचने लगते हैं, कोयल की कूंक गूंजने लगती है, पानी की बूंदे धरी पर पड़ती है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और हरियाला सावन ढोल बजाता आता है। सावन का महीना और इस तरह से हम सावन के महीने को जीते हैं। तो हमारे श्रोता लगातार लिख रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब भेज रहे हैं कि नहीं। भाई आज तो बिल्कुल सीधे साधे सवाल आपसे किए जा रहे हैं ताकि सुरीला सफर में कहीं रुक के हमें दिमाग पर ज्यादा जोर न देना पड़े कि आज जो हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। तो हमने आपसे सीधा साधा सवाल किया था कि आपके शहर में सावन बरसा या नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर खेत खलिहान में या आपके आसपास झूले लगे कि नहीं, आपने झूला झूला कि नहीं, इसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है। वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहां हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में ये अपनी बात जो आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। ये आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है कौन है अपना। बीडी मिश्रा का लिखा गीत है और एस एन त्रिपाठी का संगीत है। बहुत कम बजता है गीत

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी ये महीना अत्यधिक

प्रिय है क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीना नहीं आता था लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफी रूमानी हो गया है। क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है। बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो बालपन वाले झूले कहाँ मिलते हैं मंदाकिनी जी, जो पेड़ों पर लगे रहते थे अब तो पार्क में झूले होते हैं। अच्छा आज भी जब आप गाँवों में जाते हैं ना तो वहां पर आपको पेड़ों पर झूले टंगे हुए मिलेंगे, है ना। गाँवों में ढाणियों में जाकर देखिए, वहां खेतों में खलिहानों में पेड़ों के आसपास झूले लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां घूंघट अपने में वो अपनी पूरे पारंपरिक पोशाक में होती हैं मतलब, और झूला झूलती भी आपको मिल सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफर तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादलों को देख पपीहे की तान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवंत कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है जहां देखो हरियाली हरियाली होती है। इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है और उस सफर पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफर का आनंद आज उठा रहे हैं और आप इस सुरीला सफर में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

जी तो जब बात चल रही है सावन की, तो जब बादल खुलकर बरसते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अनकहे दर्द को कहना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि सुरीला सफर के इस यात्रा में हमारे साथ आ जाइए और अपनी तन्हाई को दूर करिए इस गीत के साथ।

उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी। लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। इसीलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रुमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों के सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है। क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले धुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वही एक श्रोता ने कहा है, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सपत्नीक हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वही श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत ने हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ

रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रही हूँ और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई ये आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है, बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना, सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना, अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, हा हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पतिदेव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कटती हुई ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपके चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई? हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में, जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताजा हो जाती है, कम से कम शब्दों में बताना है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे लिए सावन की रिमझिम फुहारें, खिड़की पर आती ठंडी हवा की लपटें लपटें अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रुमानियत से जीता है तो उसकी जिंदगी क्या कहने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूं और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूं, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है बारिश में, बस कुल्हड़ वाली सौंधी सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है। हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है। उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के शानदार गीत, आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम, बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूँ कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है, बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में, इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं के चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं, और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी, अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है, और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाजत देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफर से। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है। बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो यह है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

ताय ताय लियो गिर नक पर बंत बजावत धेनु चलैया जगे मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 981,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारे

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
1: After a detailed assessment of the evolving
2: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
1: Headline inflation has edged up.
2: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहली तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
1: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
1: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: Q4 at 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।

0: किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारू मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो। बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो। अभी तो नया साथ है, आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो।
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है सहेली। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, आज ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजी मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप बार बार ये कह रही हैं।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही है
1: ना। अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती हैं?
2: मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन
2: किन बातों की? साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया क्षमा मांग ली तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
1: उन पर इस विषय पर भी तनाव बहुत होता है
2: जी।
1: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
2: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
1: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है
2: जी,
1: बहुत विराट है
2: जी,
1: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये साड़ी
2: दी थी। तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है, और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं। अगर हम
1: और ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, हाँ। इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है,
2: हाँ।
1: और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो जाती है।
2: वो खाने का जायका बढ़ा देती है
1: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का। सुनते हैं ये गाना।

हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की, और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपनी सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्वभर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के

0: नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और महेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और तभी से महेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। महेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट महेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाले रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि महेश्वरी साड़ियों के डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
1: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है।
0: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही महेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है
1: जी। और महेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता महेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियां जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
0: महेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
1: और महेश्वरी साड़ी भारतीय हस्तकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
0: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, पर भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं तो
1: है?
0: झगड़ती नहीं
1: ऐसा नहीं हो सकता
0: नहीं बिल्कुल नहीं
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे। इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी
1: धीमी
0: आवाज में,
1: आवाज में
0: तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल
1: ये
0: झगड़े।
1: नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर
0: तो
1: गए
0: बात
1: होंगे ना
0: की पत्नी से डांट खानी
1: हाँ,
0: पड़ेगी
1: क्यों ना, आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया, और आपने भी बता दिया
1: हाँ,
0: कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही
0: तो
1: सामान्य सी बात है ना,
0: हाँ,
1: झगड़ा होना।
0: लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर। मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते हैं, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31

0: 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है।
1: बिल्कुल।
0: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं, पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता हैं इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहां से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहां जाए, उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए तो अलग होना बेहतर होता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा। उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है, तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
1: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है, लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है, तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं इन चीजों की, लड़ाई झगड़ों के लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है, और काउंसलर्स मतलब दोनों की बातों को सीक्रेट रखते हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है, यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहती कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बातें। कितनी अच्छी बात है ना।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि ये रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
1: हाँ,
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में। आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
1: मोबाइल से भी सुनते हैं,
0: मोबाइल पे भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता हैं जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार चल रही थी। तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है। मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे तो फिर थोड़ी बहुत मन मुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मन मुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है?
1: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं।
0: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर गीली तौलिया रख दी,
1: सब्जी लाने के लिए बोला था तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई
0: खास बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। और पति पत्नी के बीच या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या

0: चाहिए।
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक अधिक हम महत्व देते हैं, कि वही वही बात, ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए सोनाली जी, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ बाहर।
0: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने भी जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का
1: हाँ
0: ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
1: मैं
0: कॉफी
1: बना रहा
0: पीनी है,
1: हूँ, तुम पियोगी
0: हाँ ये
1: क्या?
0: वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई
1: बिल्कुल।
0: मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ हम घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते
1: अरे
0: हैं ये।
1: बहुत सारे हैं उसके, तो बहुत सारे कि साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी,
0: हाँ
1: चलिए ये साड़ी
0: ये
1: खरीदना
0: तुम्हारे
1: चाहती
0: लिए
1: हो,
0: ले आए
1: कहा,
0: हैं,
1: या फिर क्षमा कर देना, सबसे जरूरी बात
0: लेकिन
1: है।
0: वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम
1: ये
0: की दीवार है
1: बहुत मोटी दीवार होती
0: वो ऐसा करने नहीं देती है।
1: है।
0: चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं, इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
1: आज
0: हटाओ,
1: तो पूछूंगा ही नहीं, ये आज तो मैं
0: बिल्कुल
1: पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात
0: हाँ,
1: करने ही नहीं वाली।
0: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
1: गाना सुनना।
0: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि भाई,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: ये दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं क्या, नहीं आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना, जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ वही अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकौड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बता,
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है हमारे, बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिख कर भेजी जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय-समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदाकदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है दबाव के चलते, परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहाँ
1: जाता है,
0: हाँ चोटिल होता है। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी ना मांगे।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था, गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना। तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, मैं तो मैं दूसरे रूम में फोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
1: आप कान में हेडफोन लगा लीजिए ना।
0: हाँ वो भी एक तरीका
1: है। ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती है जबरदस्ती मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
1: एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्षमा बड़प्पन की निशानी है, क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भी तो कुछ टिप्पणी
1: है। एक साथी लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं, उसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात यह भी है ममता जी, कि जो रिश्ता होता है ना, कांच की तरह होता है, कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से, बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है, लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे वीरस्य भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है, जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी माफी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो
0: और
1: बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते हैं एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल। तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है।
1: सभी की और
0: अगर
1: खासकर बच्चों की भलाई
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब
0: अच्छा,
1: हम चाय पीने वाले
0: क्या बात है
1: हैं।
0: भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारे हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए,
1: मिटा
0: और
1: दीजिए
0: हाँ
1: दूरी।
0: माफी मांगिए और
1: जी
0: खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: जी
0: और
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े,
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं।
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करें और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाएं और जरूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपनी पसंद अनुसार पीस लें और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसें।
0: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियां और जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले, इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें, सारी सामग्री को ठंडा होने दें, फिर इसमें नमक, हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काट कर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन, हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काट कर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले, इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दें। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ अब बहुत अच्छी लगती है। करौंदी की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काट कर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
0: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी,
1: चटनी हाँ
0: है ना,
1: क्या बात
0: जो
1: है। फिर तो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
0: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले
1: मिल जाए।
0: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।
2: न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है,
1: मुझे लगता है
0: और
1: श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना?
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये 1 घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसमिशन
2: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है। मेरा बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5-6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी। तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ, और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँ, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, फैंटम जिसको वेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल,
2: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल। ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
2: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर से लेने
2: जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
1: बाल भारती,
2: राजा भैया, कई किताबें,
1: ढेरों
2: ढेर। और पराग, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे। जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए। तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहां से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
2: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था। क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुध-बुध छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की किताब के अंदर,
2: कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लगे हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था, तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी।
2: हाँ, जरूरी तौर पे हो रहा था कि और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था।
1: पापा जी को थोड़ा बहुत था। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
2: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीजें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियां पढ़ रहे थे, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी।
1: बिल्कुल।
2: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी, क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया

0: कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहां रहते थे शहर में
1: बिल्कुल,
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो लोग में हिंदी अनुवाद आया करते थे वो भी मौजूद रहे होंगे।
0: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
0: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन,
0: हाँ मुल्ला नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
1: राधुका प्रकाशन,
0: हाँ राधुका प्रकाशन, और उसमें एक कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ नाजानू की कहानियां, और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, मेरी
1: सबने पढ़ी, बिल्कुल। तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे,
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: But

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था, तो
0: मतलब
1: मैंने
0: बहुत ही लेट आया।
1: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहां। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है।
0: हाँ।
1: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं।
0: वाह,
1: बहुत
0: वाह,
1: लंबे
0: वाह।
1: समय तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में अब पाकिस्तान में,
0: अब पाकिस्तान
1: हाँ, में हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो।
0: नहीं,
1: मुझे मुझे ऐसा लगता था।
0: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा,
1: हाँ,
0: दिख
1: जैसा
0: रहा
1: वो,
0: है।
1: हाँ, जैसी जिसकी नजर।
0: हाँ।
1: तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून बनाते थे।
0: ओके।
1: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं।
0: तो उस
1: और
0: दौर
1: ये
0: के
1: एक
0: कौन
1: प्रोफेशन
0: कौन से
1: है।
0: नामों से आप परिचित हुए?
1: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
0: पहले ही
1: लेकिन
0: बॉक्स
1: उनका
0: में
1: काम,
0: नाम आता था
1: हाँ,
0: ली
1: पहले
0: फॉक।
1: बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं। फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं। रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं। बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रख लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी 4 मिलेगी 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
0: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
1: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफ़ी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूँ तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक्स से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहा होगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
0: लिफाफा भेजता था
1: वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ वो तो नियम ही था
0: जी।
1: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ तो कुछ भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में। अच्छा। और सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्रॉइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ एंड बनाया मैंने कार्टून, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में, मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडीगढ़ गए पहले ही दिन, पहले ही कार्टून गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
0: और वो भी भिलाई में।
1: भिलाई में तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपए चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपए में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
0: यस
1: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपए का सेट आता था,
0: तो
1: दो सेट में,
0: और वो बड़ा महंगा लगता था,
1: 56 रुपए बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपए मिल रहा था महीने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
0: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे।
1: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए,
0: अपनी बड़ी होनी चाहिए।
1: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की, मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
0: कितने साल चलाई
1: वो? हमने चलाई करीब 4 साल।
0: अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
1: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
0: अलग कहानी,
1: अलग कहानियां हैं, वो एक अलग मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
0: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका?

0: पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया, उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था, और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: हाँ, तब
0: तो
1: तो अच्छे
0: मजे की बात ये
1: पैसे।
0: थी कि पैसे भी आ रहे हैं, और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपये भी महीने के बना ले रहा है,
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: रकम थी
0: बहुत
1: ये तो।
0: बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और
1: हाँ,
0: आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर
1: तो
0: पढ़ाई कौन
1: सेट था
0: करेगा, पढ़ाई कौन
1: मामला।
0: करेगा।
1: अच्छा, फिर
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप रे बाप,
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया।
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
1: इसकी
0: में नहीं
1: आगे की
0: आया।
1: कहानी सुनिए आप, ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को
0: सोचना
1: अंधेरे
0: पड़ेगा,
1: चलेंगे।
0: चलिए।
1: कहां

0: डन।
1: नवी में आप फेल हो गए,
0: नवी में मैं फेल हो गया।
1: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
0: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है,
1: हाँ, कि फेल हो
0: हाँ
1: जाऊंगा,
0: फेल हो
1: मतलब
0: जाऊंगा
1: पढ़े नहीं
0: लगता है
1: थे।
0: कुछ। नहीं मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
1: वैसे
0: वो
1: नवी
0: पूरा
1: होता
0: पूरा
1: भी
0: ऐसा
1: फिसलदार मैदान ही है।
0: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा 10वीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया
1: नहीं,
0: जाता
1: और
0: है,
1: ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट
0: पीछे
1: गया,
0: छूट
1: अभी
0: गया।
1: होश में आ जाओ।
0: नहीं वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक
1: बिल्कुल
0: हाफ पेंट था फिर फुल पेंट आया,
1: हाँ।
0: तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं, तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे।

0: वो मतलब क्लास 9th का एक लड़का है जिसका हर महीने कुछ
1: कहीं ना कहीं
0: कहीं ना
1: कुछ
0: कहीं
1: छप
0: कुछ
1: रहा
0: ना कुछ
1: है।
0: छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हम
1: हाँ
0: हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पे कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं।

0: बहिष्कार हो जाता है, जो बच्चा फेल होता है उसका, उसमें बच्चे की गलती है नहीं है।
1: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता, वो
0: हाँ,
1: जो एक्सेप्टेंस
0: स्टिग्मा
1: वाली
0: जिसको
1: बात
0: बोलते हैं ना,
1: है।
0: तो स्टिग्मा आ जाता है वो, तो
1: हाँ
0: वो स्टिग्मा तो आ गया था। और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो,
1: हाँ
0: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है अभी तक, आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते
1: नजरें
0: हैं,
1: कैसे मिलाएंगे?
0: नजरें
1: हाँ
0: कैसे मिलाएंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
1: हाँ
0: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
1: पूरे एक साल।
0: देखिए, बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो
1: बिल्कुल।
0: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है
1: घर
0: ना,
1: घर
0: एक साल
1: वालों
0: का।
1: का एटीट्यूड क्या था?
0: कुछ खास ऐसा मतलब, पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
1: क्या काम था वो?
0: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है वो मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे।
1: अच्छा, ये
0: हाँ,
1: सब चल रहा था।
0: और ये सब चल रहा था। उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया, वो भी मेरे ख्याल से मेरे 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर। तो वो शुरू किया मैंने, मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी, वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल
1: का
0: होता है
1: उस
0: तो वो
1: बच्चे के ऊपर
0: अपने
1: क्या असर
0: अपने
1: पड़ता है?
0: आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है, उसके
1: करेक्ट।
0: ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नाइन्थ में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि नाइन्थ में फेल होते हैं या नहीं होते हैं।

0: फिर पता चला कि होते हैं,
1: होते हैं, होते हैं।
0: हाँ, जहां वो कहानी बेस्ड है वहां तो होते हैं। तो फिर उस चीज को लेके बहुत सारी चीजें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहां मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं, एक एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह पाके निकल जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
0: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद।
1: अच्छा,
0: नाइन्थ सेकंड ईयर।
1: ये एक तरह की राहत,
0: एक तरीके की राहत थी।
1: हाँ।
0: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो घबराहट नहीं थी।
1: हाँ,
0: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में।
1: हाँ,
0: क्योंकि ये सब मेरे से छोटे थे मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे। तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो नाइन्थ और टेंथ यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते नाइन्थ और टेंथ निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
1: अच्छा।
0: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो रही थी उसी शहर में।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे, आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-8 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का।
1: तो एक नए सिरे से बनने की तैयारी थी
0: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
1: बिल्कुल। ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
0: सुपर कमांडो दो की पहली किताब, हाँ, प्रतिशोध की ज्वाला थी वो। और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
1: तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ एक गाना सुनते हैं
0: जी। बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा।
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी करीब
0: हाँ,
1: करीब
0: धीरे धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे धीरे।
0: करके, और
1: मेरी मेरी
0: उनका
1: पीढ़ी,
0: अंत
1: मेरे
0: हो
1: ख्याल
0: गया।
1: से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज़ को खुद करके ना देखूँ, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीज़ें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से,
0: अच्छा।
1: तो हाँ ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है? तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है? तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे? तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देख के आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से, तो
0: अरे
1: 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, तो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था।

0: मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेके कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज़ करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूँ उससे अटैच भी हूँ और डिटैच भी हूँ। अटैच हूँ जब तक मैं उसको बना रहा हूँ, डिटैच हूँ द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूँ। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो
1: बिल्कुल
0: सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था। कॉमिक्स बंद हो चुकी थी, तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा। और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहाँ जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूँगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊँगा। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहां खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्राइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, मैंने लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके।
1: अरे
0: वो
1: बाप
0: कहीं
1: रे।
0: मेरे पास रखा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं। मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे, तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई स्कोप ही नहीं
1: सिस्टमेटिक
0: था,
1: मामला नहीं
0: स्कोप
1: था।
0: ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में। मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी, और जो कोर्सेस थे वो बहुत महंगे थे, तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है। मतलब वहां आप आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौथम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था, तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम कहाँ था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया, और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह।
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार उस
1: मौजूद
0: स्टूडियो में
1: थे।
0: थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था, क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियां पसंद आने लगी, उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्रॉइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं
1: साथ
0: था। गौथम

0: था गॉथम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें, तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला, लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज़ से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज़ को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल जाता
0: निकल
1: है।
0: जाता है, अब वो काम बन जाता है कि
1: यस
0: आप बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा जिनको बोलते हैं, मांगा मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मांगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मांगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के RJ हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब, मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे
1: बिल्कुल
0: स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में, तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो RJ थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इंफॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था, तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने लेकिन
1: आदमी
0: आदमी काम का है।
1: हाँ
0: लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। तो मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, वो 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिना है। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिना ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं, मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी, वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए हैं तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए, फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट
0: हाँ, चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: लिफ्ट करा दे।
1: अदनान समी की आवाज।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं।

0: तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है। ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी।

जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलवायु सिंधु से तर सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। जी हाँ दोस्तों, दिनकर की इन पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, अपना देश विकासशील देश है, जिसे विकसित भारत बनाने की दिशा में हम सब भारतीयों की ही जिम्मेदारी है, विशेषकर हम सब युवाओं की, क्योंकि जो युवाओं की भूमिका है वो हर एक नागरिक से कहीं ज़्यादा होती है। दोस्तों, विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक का आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। जब नागरिक आत्मनिर्भर होंगे तभी वो इस प्रकार के विकसित भारत के स्वप्न को साकार कर सकेंगे, से विकसित भारत के रूप में कन्वर्ट कर सकेंगे। हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को अपनाना, नए स्किल्स को सीखना, नवाचार करना, अपने काम में ईमानदार रहना बहुत ही जरूरी है। हम अच्छे से जानते हैं कि देश की जो प्रगति है तब होती है जब व्यक्ति अपने स्तर पर मजबूत बनता है। आर्थिक और व्यावसायिक आत्मनिर्भरता के लिए हमेशा हमें अपने यहाँ बने उत्पाद और स्थानीय कारीगरों की चीज़ों को प्राथमिकता देनी होगी अपनी उन खरीदारियों के अंतर्गत जो हमें हर रोज़ के कार्यों को पूरा करने के लिए करनी होती है। साथ ही नए हुनर सीख कर

डिजिटल तकनीक, हैंडीक्राफ्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर भी हम अपनी कमाई के साधन बढ़ा सकते हैं, नए साधन बना सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उद्यमी बनने के लिए हमें प्रेरित होना होगा, इस प्रकार से मोटिवेट रहना होगा ताकि हम सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले ही नहीं बने बल्कि छोटे व्यापार या स्टार्टअप शुरू करके दूसरों को भी रोज़गार दे सकें, क्योंकि नौकरी ढूंढने वाला बंदा केवल एक नौकरी के लिए पात्र बन सकता है। वहीं अगर हम इस प्रकार से रोज़गार देने वाले बनेंगे तो निश्चित रूप से कई लोगों को रोज़गार मुक्त बना सकेंगे। रोज़गार के अवसर हैं जो बढ़ेंगे, इससे काफ़ी लोग उस माध्यम से अपने पैरों पर भी खड़े हो सकेंगे और जो बेरोज़गारी है वो भी दूर होगी। व्यक्तिगत विकास का रास्ता भी प्रशस्त हो सकेगा, जिसके लिए उपयोगी ज्ञान और उच्च शिक्षा हासिल करके देश के विकास में सही योगदान दिया जा सकता है। दोस्तों, नवाचार अपनाकर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नए और रचनात्मक तरीके भी खोजे जा सकते हैं, क्योंकि समस्याएं दिन ब दिन हम यूँ कहें कि अपग्रेड होगी, अपडेट होगी, लेकिन हमें भी उस लेवल पर अपडेट रहने के लिए कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव, कुछ इस प्रकार की नवाचारों को अपने आदतों में विकसित करना होगा जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। फ्रेंड्स, डिजिटल साक्षरता हासिल करके ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल टूल का इस्तेमाल करना सीखें ताकि हम काम में तेज़ी ला सकें, क्योंकि आज के समय में जो दुनिया है वो डिजिटल की है और उसके तहत हमें उसी प्रकार से ट्रेंड बनना होगा। सामाजिक और पर्यावरण की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो पानी बचाकर, पेड़ लगाकर और बिजली को कम से कम व्यर्थ गवाकर भी हम निश्चित रूप से जो हमारे संसाधन हैं उनको बचा सकेंगे और वही संसाधन हमारे लिए वरदान साबित होंगे। अपने आसपास सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखकर भी हम काफ़ी हद तक अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं। समाज में एकता बनाए रखते हुए राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देकर, देश हित को सर्वोपरि मानकर भी हमारा योगदान बहुमुखी दिया जा सकता है। ये तो बात हुई हमारे आज की इस बात के तहत आत्मनिर्भर बनने और आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम की ओर। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना की। भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई ये एक महत्वपूर्ण पहल है। दोस्तों, इस योजना का मेन पर्पज अगर हम बात करें तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता है उसको बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। इसके तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए बैंकों से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। योग्य जो लाभार्थी हैं वो कौन हो सकते हैं, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो SC, ST और महिला उद्यमी इसके लिए पात्र है। साथ ही जो आवेदक है उसकी एज 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा। दोस्तों, इस लोन के लिए नए उद्यम यानी कि ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज या ट्रेंडिंग सेक्टर में पहली बार बिजनेस शुरू करने के लिए इस प्रकार का लोन दिया जाता है। यानी कि जो पुराने बिजनेस हैं उनके तहत ये लोन पात्र नहीं हैं, वही लोग पात्र हैं जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें शेयर होल्डिंग रिलेटेड पैरामीटर भी तय किए गए हैं। जिस कंपनी या फर्म के लिए लोन लिया जा रहा है उसमें SC, ST या महिला उद्यमी जो भी हैं वो कम से कम हिस्सेदारी के रूप में 51% की हिस्सेदारी रखनी चाहिए, तभी इस प्रकार की शेयर होल्डिंग के तहत वो आवेदन कर सकते हैं और वो पात्र होंगे। यह योजना जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करती है। बैंक ऋण चुकाने के लिए आसान शर्तें और सहायता भी प्रदान करती हैं। आवेदक आधिकारिक स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करते हुए अपना आवेदन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये तो बात हुई स्टैंड अप इंडिया योजना की मूल जो शर्तें हैं उसके तहत पात्रता की। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सॉन्ग।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों हम बात कर रहे थे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत किस प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों इसकी विशेष लाभ हैं ये ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेज स्थापित करने के लिए जो योग्य उधारकर्ता हैं उनको 10 लाख से 1 करोड़ के बीच एक कंपोजिट लोन प्रदान करता है। लोन को अधिकतम 18 महीनों की अवधि के साथ 7 वर्षों में चुकाया जा सकता है। ये लोन स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के हम बात करें तो कोलेट्रल या गारंटी द्वारा सुरक्षित भी होता है। ये लोन उस कैटेगरी के लिए बैंक की सबसे कम लागू दर पर उपलब्ध है जो उधारकर्ता है उसको सुविधा और संचालन में आसानी के लिए रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। उधारकर्ता जो कुछ शर्तों के अधीन डिफरेंशियल ब्याज दर स्कीम के तहत सब्सिडी के लिए भी योग्य है। जो उधारकर्ता है उसको प्रशिक्षण कौशल विकास परामर्श परियोजना रिपोर्ट तैयार करना आवेदन भरना कार्य शेड उपयोगिता सहायता सेवाएं सब्सिडी स्कीम इस प्रकार की सारी सेवाएं एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से हैंड होल्डिंग सपोर्ट का लाभ भी मिलता है। उधारकर्ता को लोन स्टेटस की जानकारी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और ट्रैकिंग के लिए स्टैंड अप इंडिया पोर्टल को एक्सेस करने का भी अवसर दिया जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई इसकी विशेषताओं और विशेष लाभों से जुड़ी। अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

दोस्तों, अब बात करते हैं अपन डेटा साइंस और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है, आज के समय की सबसे तेज और ज़्यादा सैलरी देने वाले करियर क्षेत्रों में से एक है। इसमें डेटा एनालिसिस की बात हो या डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसे पद बहुत क्रिएट हो चुके हैं। फ्रेशर्स की शुरुआती अगर हम बात करें तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है और सालाना रूप से काफ़ी अच्छा जो व्यक्ति है वो अपना करियर इसमें बना सकता है। डेटा एनालिस्ट यानी कि डेटा को समझना और बिजनेस रिपोर्ट तैयार करना। डेटा साइंटिस्ट यानी बड़े डेटा से ज़रूरी बातें और भविष्य के अनुमान निकालना। इसके साथ ही मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, एआई और कोडिंग से स्मार्ट कंप्यूटर मॉडल बनाना। इसके साथ ही चैट बोट या रोबोट जैसे स्मार्ट तकनीक तैयार करना भी एआई इंजीनियरिंग के तहत इसी क्षेत्र में शामिल है। दोस्तों, इसके लिए निश्चित रूप से ज़रूरी स्किल्स भी होगी जिसके तहत व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे। तो प्रोग्रामिंग भाषा की अच्छी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही

0: क्षेत्र में काम करने के लिए कुछ कोर्सेस भी हैं। कंप्यूटर साइंस या एआई और डेटा साइंस के तहत बीटेक किया जा सकता है, साथ ही बीसीए डेटा साइंस या एआई के क्षेत्र में किया जा सकता है। एमटेक एमसीए जैसी उच्च शिक्षाएं भी हासिल करके इस प्रकार के क्षेत्र में अपना करियर आजमाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्लास्टिक का कम से कम यूज करने के संकल्प के साथ ही आज का युवाणी बस यहीं तक। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं जिसमें कार्यक्रम पणिहारी।

આપણો કાર્યક્રમ સણનવાળી સગલી બહેનાને અર્ચના ચૌહાણ રા ઘણા હેતુ રામ રામ રામ રામ બહેના રામ રામ ઓર કહીં કામકાજ હો રહ્યા હૈ આપણો કામ શરૂ હો ગયા હૈ ઓર આપા કર રહ્યા હા કેસો નિવડના આયા બાર થોડો સો લાગ રહ્યો કે નિદાન વગેરે ભી પૂરો હો ગયા હૈ ઓર ઉન નિદાન રમાયને થોડી સી થકાન હોય પર આ લાગે કે અભા જી કી લહેરાતી આપણે ફસલ હૈ લહેરાતી આપણે અચ્છી લાગે કરે ઓર લાગે ભી ક્યુંકી આપણી મહેનત રો ફલ હૈ है ना। और आज आप देख रहे हैं कि कई इन महीने भी अपने बहुत माता फोड़ी करनी पड़े, खाली आपा सोचा कि कचरो ही काट दो, उन पाछो कचरा रो भी अपने अपने पशुधन ने दिया करा, उनके बाद भी अगर कोई जमे तो आपा बाढ़ कर दिया करा, तो आप बहुत ही हर चीज़ रो उपयोग करा, तो अपना एक हुनर है और इन हुनर ने आप हमेशा जगाने वास्ते मेहनत करा और मेहनत करनी अपने वास्ते बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शरीर अगर साथ देवेला तो आप हमेशा मेहनत करता रहेला। और आप रो तो कहना कही आप सब तो खूब मेहनत करो और अच्छी बात है, स्वस्थ रहवा प्रसन्न रहवा जद ही अपनी जिंदगी खुशहाल और बहुत अच्छी निकले। और क्या करे हंसी खुशी निकले तो इन्हों कहना ही कही है, हंसी खुशी सो जिंदगी अगर थोड़ी भी पार हो जावे और थोड़ा सो दुख रो पहाड़ पड़ जा तो वो समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो जावे। इनमें से सोचा करें कि जी की सोचे नहीं कि भाई आप किन काम काज में लागड़ हो, आप कहीं काम काज कर रहे हो, आप कितनी खुशियां बटोरी हो जिकी की आपके हिस्सा में आई है वह खुशियां बटोरी, और अचानक ही कोई असहाय दुख हो जावे, कोई अड़ी समस्या आ जाए कि आप कहवा कि अरे भाई दुखारो पहाड़ पड़ गया और आप कोई बात नहीं समझ सका, कोई काम नहीं कर सका और आपनों जी को शरीर है बिल्कुल निढाल हो जावे। बात सही समय समय रही है, इनमें कई बार परेशानी भी होया करे, कई बार आपा सोचा कि जी को आपा सोचने काम करा वो बिल्कुल नहीं हुए, पर सोचन रे साथ आ बात भी ध्यान रखनी है बहना कि आपा जी की संपत्ति आपनों अधिकार है, आपनों मान है, सम्मान है, वह सब

बड़ी है संपत्ति रे साथ ही आपा आ सोचता रहे कि आज जो हमारे सामने ना दिनेश भाई खड़ा हुआ थोड़ा मोकड़ा रहा है मोकल रहा है और कह रहा है कि भाई बहना रही बहना बात करो तो क्यों नहीं भी पड़े भाई दिनेश भाई इनमें कोई हंसी खुशी बात है नहीं बहना रही बात सो तो जुड़ी उड़ी है ना। तो देखो मैंने हंसी रुकी नहीं है और मैं आपने अब बात बतानी चाहूँ कि हंसी रहे इन माहौल में। देखो थोड़ी छोटी सी बात पर वह राजी हो गया तो आ कहीं एक अपने मान मनवा रहे एक आपा सोचन री बात है एक आपा समझन री बात है। इमें अगर आदमी ने उन्हों स्वाभिमान ने आपा देखा कि किन तरह को उन्हों चुपती बात कह देता तो वो रिसा बढ़ता तो जाता है ना। आया अगर उन्हें खुशियों बात कही तो उन्हों एक मान बढ़ियो एक सम्मान बढ़ियो तो आप आई चाहवा कि छोटी छोटी खुशियाँ उन्हें आप हासिल करा और सबों बढ़िया अपनी संपत्ति सबों पढ़ो अपनो कर्तव्य सबों पढ़ो अपनो जिको व्यवहार है वही काम आया करे अपनी बोली है वही काम आया करे। और अब आप देखा कि खेता में भी काम कर रहे हैं और थक जाऊँ और सोचा कि भाई अभी तो आस पड़ोस वाला लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है काम किया निबड़ी वही तो धन पड़ियो है इन वो पड़ियो है मतलब दिमाग में अणु तो एक तनाव भरियो है। उन्हें बाद भी आपा सोचा कि नहीं रे थोड़ो तो एक बैठ थोड़ी सी चाय पानी पीवा थोड़ी सी हताई करा थोड़ा सो कल्ले वो कर ला तो इमें कहीं है इमें है कि आप थोड़ो सो जिको जिंदगी रो है हिस्सों में आपा सुकून मिल रहा है। और बहना सुकून जिको अगर जिंदगी में हंसी खुशी प्रेम स्नेह और एक आत्मविश्वास और तो और अपना व्यवहार इनसू बहुत ज़्यादा आया करे ऐसा वह कमाई है ऐसा बहना वह कमाई है जिकी की आपा ले रहा हाँ लोगों से ले रहा हाँ लोगों ने वापस दे रहा और इन कमाई रो जिको है नहीं कोई मोल नहीं है। क्योंकि आपा कहवा कि आदमी कोई आपा जू ही उन रास्ता माते उन डगर माते चला उन पथ माते चला तो लोग कहीं के वाह वाह इनरी बात ही अलग है इनरी बात आपा सुन ला तो कहीं बात है इनसे मिलना तो आपा कहीं बात है इनरी दो बात सुन ला तो कहीं है ऐसा अपना व्यवहार है अपनी कुशलता है जिनसे कि आपा आगे बढ़ रहे हैं। और ओ ये बार लड़ाई झगड़ा ओ उन्हें मारकूट करियो वो उन्हें भाग्यो कोई उन्हें लार पड़ रही है कोई सोचे कि जट तक वो नहीं दिखेला मैंने ठोकूला ये वो तो ऐसा कई है कुसंगति रा परिणाम है ना। और कुसंगति कदे यूँ समस्या अपन आया करे आप सोचते हैं ओहो आज आप नहीं करियो थोड़ा सो कि नहीं ठेस पहुँचा दिया कोई दिमाग में अड़ी बात आ जा अरे आप काम करना चाहिए लेकिन हो नहीं पायो या आज उन्हें आत्मा ने मैं थोड़ा सो आपरी बोली हूँ दुखी करी तो अपने वाकई लागे कि हाँ बात तो सही है कटी कटी तो इन बात रो मान सम्मान ये सब चीज़ें हैं जिन्हें आप सोच सका। तो बहना एक छोटी सी बात है कि अपना व्यवहार अपनी बोली अपना जिका मान सम्मान ये सब सिर्फ अपने में ही व्याप्त है और ज़रूरत है खुद ने समझन रही जब तक आप स्वयं अपने अपने नहीं समझा ला तो लोगों ने क्या समझा ला चार बात कह वाला तो वह सीधा वही कह नहीं कहावत है गुरु जी खुद बैंगन खावे दूजा ने आशीष देवे तो बात सही है। आप पहले अपने माते लेवा अपने व्यवहार हो चाहे अपनी बात हो चाहे अपना लोगों ने समझाने तरीको कोई भी चीज़ हो जिन्हें आप समझ सका तो ऐसा व्यवहार कुशल आदमी अगर आगे बढ़े बात करे तो इनसे बड़ी बात अपने वास्ते कही होया करे। तो बहना देखो बातचीत है अपने कार्यक्रम में और आप सुसम

आशीष देवे तो बात सही है, आप पहले अपने माते लेवा, अपने व्यवहार हो चाहे अपनी बात हो चाहे अपनों लोगों ने समझाने तरीको कोई भी चीज़ हो जिन्हें आप समझ सका, तो ऐसा व्यवहार कुशल आदमी अगर आगे बढ़े बात करे तो इनसे बड़ी बात अपने वास्ते कही होया करे। तो बहना देखो बातचीत है अपने कार्यक्रम में और आप सुसम

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं।

0: ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: हाँ तो बहना, आप बातचीत कर रहे हो और आपने लहरिया जी को कि श्रावण मास चल रहा है, आपने बहना रो खास त्यौहार है ना तीजनिया, ये किया करे ना कि वह आपके प्यार आई है और हंसी खुशी टिटोलियों आपकी सखी सहेलियाँ आपकी बहना भाभियाँ सबारे साथ है, जिका भी आसपास जुड़ जुड़ है जिकी भाभियाँ वह भी आपके प्यार वगैरह गई है, तो इनमें एक होया करे कि श्रावण मास आप मनावा हंसी खुशी रो आपके बहना रो बहुत ही अच्छो एक माह हो गया करे और सजे धजे आपकी गीत संगीत आपकी बातें मतलब बहुत ही यूँ सुहावन लगे करे कि अगर आप खुशियों पर जी रहे होने तो इनसे बड़ी बात अपने वास्ते कही होया करे, क्योंकि खुशियां बहुत ही मुश्किल मिले बहना और इन खुशियां ने अगर आप हासिल कर लो नहीं तो आपने ओ लगे कि आपरा जी का जिंदगी रहा है कई दिन और बढ़ गया है। बिल्कुल सही है, तनाव वाली चीज़ है जिसमें अपने उम्र बहुत जल्दी घट जावे और कई सारी बीमारियां आप सामना करना पड़े, और खुशी वाली चीज़ है जिकी की अपनी ज़िंदगी बढ़ावे और शरीर में जिकी भी समस्या है उनका समाधान बहुत ही जल्दी अपने आप हो जाया करे, तो वही एक मस्तिष्क है वही अपना दिमाग है जिनसे कि आप चल लिया करें। हाँ तो अब आप बातचीत कर रहे हैं किन तरह अपना मान सम्मान अपने स्वयं रे माते है और इन तरह मैं आपने बताई कि वही जद ही बड़े लग कि जबकि रिश्ता में जिकी कड़वाहट हुए वह सिर्फ पाता हूँ होया करे, कड़वाहट शुरू होता ही अपने ओ लगेला कटूँ ध्यान है अपने जन उन्हें बोल लूँ थोड़ी सी, अगर बच्चा ने भी की बोल दा आप तो बच्चा ने भी एक छोटो सा मासूम बच्चा के सामने आप आँख निकाल दो और थोड़ा सा यूँ करो तो वो भी ना समझ कई महीना रो कई दिन रो बच्चों भी एकदम समझ जावे एकदम ठिठर जावे, ओहो अटे तो किंग मतलब मन में कहीं सोचे हाँ किन की तो समस्या है। इन इतनों चलो अपा बड़ा बुजुर्ग रीन एनी सबरी बातें करा, नन्ना जी का मन है मैंने भी समझाऊँ रही, आपा कोशिश करा पर नहीं समझे, जो ही उन्हें प्रेम री भाषा प्यार री भाषा सिखावा वो बहुत जल्दी समझ जाया करे, तो जिकी कड़वाहट है वह अपनी भाषा रे अपने जिकी रिश्ता में है वह आपा कई करा करा छोटी सी बात तो लड़ाई कर ला भाई, अपनी कहावत भी है कि बर्तन साथ रहे तो खड़खड़ाई तो सही, बात तो सही है, तो इन तरह रिश्ता में जिकी बात है आप घर में कितना सदस्य रहे वहाँ छोटी मोटी बातें होती रहे उन थोड़ी देर ठीक है थोड़ी देर आप जिकी जल्लाट है जिको आप क्रोध है जिको आप गुस्सा है वो उतार लो, पर थोड़ी सी देर बाद में आप वापस नॉर्मल हो जाओ, एक वापस संयम बरतो और अगर बड़ा हो तो छोटा ने माफ़ करने की कोशिश करो, छोटा हो तो आप जिद मत करो कि बड़ा ना सोचो बुजुर्ग है उन्हें एक समय लियो है एक उम्र ली है धीरे धीरे सही होएला, तो यह सब अगर आप समझ जावा तो जिकी कड़वाहट है वह बहुत जल्दी जिकी दूरियाँ हैं वह बहुत जल्दी नज़दीकियाँ बन जावे कम हो जावे, पर आज रो जिको आप देख रहे हैं आज जी को मानस है आज जी का मन है आज जी का लोगों में बात है वह कड़वाहट ज़्यादा होया करे, उनको कारण सिर्फ एक ही है कि उन मायने एक स्वार्थ री भावना उत्पन्न हुई है और जद आपने स्वार्थ री भावना उत्पन्न हो जाए तो आप सोच भी नहीं सका कि आप कि नहीं वास्ते की भी कर सका, अगर आप में निस्वार्थ भावनाओं आप काम करोला हर चीज़ ने सीखोला आगे बढ़ोला तो आप हमेशा तत्पर रहोला लोगों रे वास्ते आप स्वयं रे वास्ते, इन्हीं तरह रिश्ता री मिठास में आप सबों ज़्यादा अग्रणी रहोला, लोग आपसे बातें सुनेला लोग सोचेला कि वह चार मिनट पाँच मिनट दस मिनट एक समय अगर हमारे साथ रहे तो कई ठा माने भी फर्क पड़ जाए और फर्क पड़े वे ना मैं आपने क्यों आप क्या करें कि संगत रो असर पड़ी है चाहे आप कोई भी संगत में बैठो बड़ा बुजुर्ग हो बच्चा हो युवा साथी हो अपनी बहना हो कामकाज रहो कोई भी हो संगत रो असर तो धीरे धीरे अपने शरीर में आवई है और रंगत भी जद आवे जद आप उन मायने एक अग्रणी एक अच्छा स्वभाव एक कड़वाहट भरी जी की बातें हैं उनसे दूर और लोगों ने मिलाउन री बात करा जिकी दूरियाँ हैं उन्हें नज़दीक करा तो यह सब अपने स्वभाव री एक अनूठी मिसाल आप कायम करा करा। आज आप खिता में देख रहे हैं कि कई बहना निदान कर रहा है कितना इस लड़ना में एक साथ खड़ा और वे साथ साथ गीत वगैरह भी गा रहे हैं और वे आप काम भी कर रहे हैं तो देखो वर्णो जी को माहौल है कितना अच्छा होया करे काम भी हो रही है और वे सारी बातें भी हो रही है, इन्हीं जगह आप देख रहे हैं कि अकेला बैठ रहे हैं हो हाँ बर्तन पटक रहे हैं ये वो तो सोचा कि रे कितो दिमाग जी को है अपनों भरियो है गुस्सा हूँ कड़वाहट हूँ और लोगों के बारे में बार बार सोच बार सोचना है अपनों जी को शरीर है उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा तो आ सिर्फ और सिर्फ जिकी अपने जबान री अपने लोगों के प्रति कड़वाहट है इन्हें आप स्वयं आगे हो नगर करोला तो ऐसा दूरियां ऐसा खत्म हो जाला और धीरे धीरे आप एक नॉर्मल जिंदगी एक स्वस्थ जिंदगी के साथ जीवोला, तो आप बातचीत और जारी रखला आपने सुनावा एक और मधुर गीत सावन माते ही।

अबार आप सुनियो बाजे पाए लियो आयो सावणियो। स्वाति और गौरव जैन रगाड़ो ओ हो और बहुत ही सुरीलो गीत हो, बहुत ही आपने मन भावन किया करें कि सावन महोत्सव मनावा पा, सावन री मास री अलग अलग ऐ जी की अपनी संस्कृति री पहचान है कि किन तरह अपना वेशभूषा है, किन तरह अपनी खान पान है, क्यों आप एक दूसरा से मिलना जुलना, हर त्यौहार अपनी एक अनूठी पहचान छोड़ जाया करें। तो अपा बातचीत कर ही रहा बहना, अबार अपने ध्यान है कि स्तनपान सप्ताह चल रही है, विश्व स्तनपान सप्ताह जिको कि 1-7 अगस्त तक चले, हर साल चले करे। और देखो कि स्तनपान अगर आप बच्चों जन्म होता ही अगर मारो दूध पीवे तो वो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सके, और वो दूध इतना उन वास्ते पौष्टिक होया करे बहना कि उन्हें ता उम्र उन वास्ते वो काम आया करे। आजकल थोड़ी सी में बदलाव आ गया है, लोग सोच रहे हैं कि नहीं यूँ हो जावे वो हो जावे कई तरह रा हो जावे, पर फिर भी अपना जी का चिकित्सक है, अपने जी की किया करें ना कि बड़ी बड़ी लोगों आप बात करा वह समझे और बाद में बात हर इंसान ने, हर लोग ने, हर माँ ने समझावे, और खासकर कि उन समय आप अगर स्तनपान बच्चा ने करा दिया करो तो वो आप एक तो बीमार कम पड़ेला, इन्हें जिखी भी माहिने पर क्या करे कि बच्चों हो जाए कई तरह रहो जो ही बारे निकले तो उन्हें कितना बैक्टीरियाज कितना कई वे तो वे सब उन्हें इन माहरे दूधों जगह उन्हें बहुत ही बड़ो फायदो है और ऐसा बैक्टीरियाज वगैरह ख़त्म हो जाया करे और वो एक स्वस्थ बच्चा के रूप में जन्म लिया करे। और बाद में थोड़ो सो स्तनपान आप उन्हें शुरू करने करीब यूँ तो आप देखा कि 2 साल तक बच्चों करे, और आजकल थोड़ो सो लाग रहे हो कि भाई ठीक है 6 महीना तो 8 महीना या साल भर तक तो बच्चा ने स्तनपान कराना जरूरी है ताकि उन्हें जिकी खास जिकी उन्हें मिलिया करे ताकत उन्हें एक मारे दूध में ही मिलिया करे। इन वास्ते जरूरी है कि आप स्तनपान जरूर कराओ और आप भी स्वस्थ रहे वाला, आप बच्चों भी स्वस्थ रहे वाला। हाँ तो बहना और भी आप बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि किन तरीका से आपने और अधिक करा, तो एक सुरीलो सो गीत और हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पणिहारी, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं कुछ उलमा आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक

0: बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरब और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

ये गीत हमने लिया है फिल्म अगर तुम ना होते से। किशोर कुमार की आवाज़, गुलशन बावरा की बोल।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: लीजिए सुनिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, खेतीबाड़ी सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज दिनांक 5 अगस्त 2026 को फोन इन का विषय है खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस बार विषय विशेषज्ञ होंगे श्री मनीष झाजड़ा, कृषि विज्ञान केंद्र अठियासन नागौर। आप भी अपनी खेतीबाड़ी संबंधी समस्या या जिज्ञासा के निवारण हेतु हमारे टेलीफोन नंबर 240-168 पर आज शाम 7 बजे से 7:30 के बीच हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार पुनः नोट कीजिए 240-168। नागौर का एसटीडी कोड है 01582। सूचना समाप्त हुई। यह है फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम परिंदा।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी नागौर का क्षेत्रीय चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। नीचे सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर। माटी के स्वर कार्यक्रम की यह पहली पेशकश आवाज़ हनीफ खान की है।

माटी का स्वर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM 103.7 MHz पर। आकाशवाणी नागौर का यह चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के शोर शराबे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही नीट सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बार बार बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने सभी सदस्यों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 5.25% पर यथावत रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश की आर्थिक वृद्धि जारी है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था

0: संस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी रही। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि देश में अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं, इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य ब्यौरा जल्द साझा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। अदालत ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया देने से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सीजेपी की अगुवाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं। इसके लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में मुलाकात की। श्री बिरला ने कोटा के खेल स्टेडियम में दो नए एथलेटिक्स ट्रैक बनाए जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही कोटा को खेल प्रतिभाओं के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की। केंद्रीय खेल मंत्री ने श्री बिरला को कोटा में सुविधाओं के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रधानमंत्री आवास योजना लखपति दीदी और वीबी रामजी के तहत प्रदेश में हुए कामों की सराहना की है। श्री बागड़े ने आज लोकभवन में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से गांवों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने गांवों में हस्तकलाओं और कौशल विकास से जुड़े कामों के प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने की बात कही। श्री बागड़े ने मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर भी जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक क्रियान्वयन हुआ है। राजस्थान में इस योजना में देश में सबसे ज्यादा 62,58,000 किसानों को नामांकित किया गया है। पीएम फसल बीमा योजना में साल 2025-2026 में राज्य की लगभग 2,82,00,000 हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र में 1,00,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बीमित किया गया, जो राज्य के कुल फसली क्षेत्र का 36% है। योजना में चूरू में 77%, बाड़मेर में 69% और नागौर में 47% सकल फसली इलाके का बीमा कवरेज हुआ है। पिछले 5 सालों में किसानों की ओर से 4,650 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीमियम हिस्सा जमा किया गया है, जो देश भर में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सूखा, अकाल, ओलावृष्टि, कीटों और बीमारियों के कारण फसल को हुए नुकसान की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के तहत किसान राज्य और केंद्र सरकार मिलकर प्रीमियम का भार वहन करते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के उद्देश्य से जोधपुर डिस्कॉम की ओर से कैंप लगाए जा रहे हैं। डिस्कॉम में सहायक अभियंता हेमेश जोशी ने बताया कि लोग इसका फायदा उठाकर बिजली के बिल को न्यूनतम कर सकते हैं।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े, जिनकी सोलर से बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है। योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थी नेमाराम ने बताया कि उनका बिजली का बिल शून्य हो गया है, साथ ही उन्हें सरकार की ओर से इंडक्शन कुकर की भी सौगात मिली है।
1: मैं नेमाराम प्रजापत शिवनगर पाली, मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का स्वरूपण लगाया, जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब एक साल से मुझे 0% बिल आता है और 78,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर सोलर भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप भी सौर ऊर्जा लगाएं।
0: संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में आज से समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये यात्रा संत गुरु रविदास जी के सामाजिक समता, सद्भाव और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। श्री शर्मा ने कहा कि संतों ने हमेशा समरसता का भाव दिखाया है और समाज को दिशा देने का काम किया है।
2: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और ये आज से नहीं सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
0: हनुमानगढ़ में आज महिला सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की गई है। बीकानेर रेंज की डीआईजी श्वेता धनकड़ ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह के उत्पीड़न, छेड़छाड़ होने पर हेल्पलाइन पर संपर्क कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
3: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी उनके पास वापिस में कॉल जाएगा, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी, उनका नाम और उनकी जो सूचना है।
0: और अब मौसम। पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर कल से नया परिसंचरण तंत्र बनने के आसार हैं। इससे मॉनसून के फिर से सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने कल 17 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच भरतपुर में आज भी घनघोर घटाएं छाई रही तो सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर चला। नदबई, भुसावर, वैर और बयाना में भी कुछ देर झमाझम बारिश हुई। डीग में भी पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। उधर सवाईमाधोपुर में रिमझिम बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 10% कम बरसात हुई है। 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है, वहीं 19 जिलों में सामान्य और 17 जिलों में सामान्य से भी कम बरसात दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी कई बार बाधित हुई। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में देश भर में सबसे अधिक 62,58,000 से ज्यादा किसानों का नामांकन। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संत रविदास के समता, सद्भावना और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित दौसा शहर का एक नाम देवनगरी भी है। आभानेरी स्थित चांद बावड़ी दौसा जिले की आभा को बढ़ाती है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं चांद बावड़ी परिसर में मौजूद हर्षद माता का मंदिर अपनी स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। पहाड़ियों और जल स्रोतों से भरपूर झाजीरामपुर मंदिरों के लिए जाना जाता है। वहीं जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इन दिनों मॉनसून की बारिश के बाद ये पर्यटन स्थल लोगों का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहे हैं। एक ओर मौसम सुहावना हो गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने अपने खेतों में खरीफ फसल की बुवाई शुरू कर दी है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दौसा में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीते दिनों पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत दौसा आए, उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों को निलंबित भी किया। मंत्री ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना और खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने गोवंश संरक्षण और पशुपालकों के हितों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए राहत का माध्यम बना। पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत निजामपुरा में लगाए गए शिविर के दौरान स्वामित्व योजना के तहत अरण्यकला गांव के लाभार्थियों को उनके पुश्तैनी मकानों के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और पट्टे प्रदान किए गए। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें अपने मकान का वैध स्वामित्व प्रमाण मिलने से बैंक ऋण सहित विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सिकराय पंचायत समिति की मानपुर पांचोली और ठीकरिया ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने वहां औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मिली शिकायतों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने महवा के समलेटी गांव में आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने महवा केंद्रीय बस स्टैंड के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कामों का भी लोकार्पण किया। श्री बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालय बनने से क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और आयुष सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। जिले में आयोजित रोजगार उत्सव में बड़ी संख्या में नवचयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट वितरित किए गए। ये कार्यक्रम पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से वर्चुअल माध्यम से जुड़ा रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, उद्योग, पेयजल और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईसरदा पेयजल परियोजना पूरी होने के बाद दौसा जिले को भी इसका लाभ मिलेगा। जिला प्रभारी सचिव पीसी किशन ने नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में लाभार्थियों को पट्टे, नामांतरण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति और अन्य दस्तावेज वितरित किए। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना और आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। प्रभारी सचिव ने पट्टा प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने तथा शिविरों में ही अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपखरा हंगामा रे चालता आज भी कई बगत रोकनी पड़ी। रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारू अंदाजो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू बत्ता 62,58,000 कास्कारा रो नामांकन। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा संत रविदास रा समता सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही।

0: समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारीक और अब है समाचार विगतवार। लोकसभा में आज बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष रा हंगामा रे बीच बिना चर्चा रे पारित कर दियो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओ विधेयक संसद में सदन में पेश करियो। एंड्रो लगस बैंकारा रिकॉर्ड सु जुड़िया साक्षारा कानून ने मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था रे मुजब बनानो है। एंड्रे मार्फत बैंकिंग प्रणाली री हाल री जरूरत रे मुजब कानूनी ढांचा ने आधुनिक बनायो जावेला। विधेयक माए ओ भी प्रावधान है कि बैंकारा रिकॉर्ड री इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति ने अदालत माए वैध और कानूनी साक्षीरा रूप माए मान्यो जावेला। लोकसभा री कार्यवाही विपक्ष रा शोर शराबा री वजह काल तई रे वास्ते रोक दी गई। इनसु पहली सदन री कार्यवाही नीट समेत दूजा मुद्दा माथे विपक्ष रा हंगामा रे चलता आज भी बार बार रुकनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू कर बारी कोशिश करिया, वणा सगला सदस्याओं संसद ने चोखी तरीकाओं चलाबा माए इमदाद कर बारी अर्ज करी।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: राज्यसभा में पहला स्थगन रे पछे सभापति सीपी राधाकृष्णन प्रश्नकाल शुरू करिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कया के देश रा न्यारा न्यारा हल्का माए ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करिया जावेला। सरकार 300 इन भातरा संस्थाना ने मंजूरी दे चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई चालू माली बरस माए देश री माली दर रो अनुमान बढ़ार 6.7% कर दियो है। इनरे सागे मौद्रिक नीति समिति रेपो दर 5.25% ज्यो की त्यों राखबारो फैसलो करियो है। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा आज मौद्रिक नीति रो ऐलान करियो। वे कया के 32 मांगरी वजह सु देश री आर्थिक वृद्धि जारी है। भारत दुनिया री सबू तेजी सु बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनियो भयो है। चालू माली बरस री अप्रैल जून तिमाही माए अर्थव्यवस्था रो प्रदर्शन उम्मीद सु बत्तो रियो। रिजर्व बैंक माली बरस 2026-27 खातर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माथे आधारित महंगाई रो अंदाजो 5.1% सु घटार 5% कर दियो। श्री मल्होत्रा कया के हाल ताई महंगाई बदबा रो खास कारण खाबा और ईंधन री कीमता माए बढ़ोतरी है। पश्चिमी एशिया में चाल रही लड़ाई री वजह सु व्यापार रा खास रास्ता माथे घणो असर पड़ियो है, जिनसु दुनिया भर माथे माली दबाव पड़ियो है। रिजर्व बैंक रा गवर्नर कया के देश माए आवता माली बरस री शुरुआत माए प्लास्टिक रा नोट चलन माए आ जावेला। मुंबई माए संवाददाता सम्मेलन माए वणा कया के प्लास्टिक रा नोट बत्ता टिकाऊ होवे है। सर्वोच्च न्यायालय कयो के युवा छात्र प्रदर्शनकारिया ने लेर आपरा विचार राखता टेम अहलकारा ने संयम बरतनो चाहिए। अदालत कयो के हिंसा ने रोकबा खातर किणी भी भांतरी हिंसक प्रतिक्रिया दे बासु हालात बिगड़ सके है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांतरी अगुवाई वाली पीठ कॉकरोच जनता पार्टी रे खिलाफ कार्यवाही री मांग वाली याचिका माथे सुनवाई करता थका आ टिप्पणी करी। याचिका माए दिल्ली और देशरा दूजा हल्का माए सीजेपी री अगुवाई माए प्रदर्शन रे दौरान पत्थरबाजी रा आरोप भी भेड़ा है। इन खातर पार्टी री कथित जिम्मेदारी रे खिलाफ कार्यवाही री मांग करी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा माए खेल सुविधावा ने बढ़ावा खातर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया सु नई दिल्ली माए मुलाकात करी। श्री बिरला कोटा रा खेल स्टेडियम माए दो नया एथलेटिक्स ट्रैक बनाबा जाबा माथे जरूरत बताई। साथ ही कोटा ने खेल प्रतिभावां रा मजबूत केंद्र रा रूप माए बढ़ावा खातर जरूरी सुविधा देबा माथे चर्चा करी। केंद्रीय खेल मंत्री श्री बिरला ने कोटा माए सुविधावां ने बढ़ावा खातर इमदाद दे बारी आस बंधाई। वे कया के केंद्र सरकार खेल संस्कृति ने बढ़ावो देबा और देश भर माए विश्व स्तरीय खेल सुविधा रा विकास खातर प्रतिबद्ध है। ये समाचार आप आकाशवाणी राजयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोर शोरों चल रही है। राजस्थान में इन योजना में देश में सबू बत्ता 62,58,000 कास्काना ने नामांकित करियो गयो है। पीएम फसल बीमा योजना में बरस 2025-26 में राज्य री करीब 2,82,00,000 हेक्टर सफल फसली हल्का माए 1,00,00,000 हेक्टेयर हल्को बीमित करियो गयो है, जो राज्य रा कुल फसली हल्का रो 36% है। योजना माए चूरू माए 77, बाड़मेर माए 69 और नागौर माए 47% सकल फसली इलाका रो बीमो कवरेज भी है। लारला 5 साल माए कास्कारा रिकानी 4,650 करोड़ रुपया सो बत्ता रो प्रीमियम हिस्सो जमा करायो गयो है, जो देश भर माए सबू बत्तो है। ध्यान जोग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कास्कारा ने सूखा अकाल ओला पड़बा कीट और बीमारियां री वजह से फसल ने व्या नुकसान ने माली सुरक्षा देवे है। योजना रे तहत कास्कार राज्य और केंद्र सरकार मिलर प्रीमियम रो भाव उठावे है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना री जानकारी बत्ताऊं बत्ता लोगां ने देवारा लगा सू जोधपुर डिस्कामरी कानियों कैंप लगाया जा रहा है। डिस्कामरा सहायक अभियंता हेमेश जोशी बताया के लोग इनरो फायदो उठार बिजली रा बिल माए कमी ला सके है।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर 3 किलोवाट तक अधिकतम 70,000 की सब्सिडी है। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया जाए। जिन लोगों ने यह रूफटॉप सोलर लगा दिया, जिनको सब्सिडी मिल गई है, उनको सरकार द्वारा इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जा रहा है, ताकि गैस से लोगों की जो उपलब्धता है वो खत्म हो गए और लोग लाइट की तरफ बढ़े, जिनके सोलर से बिजली का जनरेशन हो रहा है। सरकार द्वारा और बैंक के द्वारा भी इसके अंदर सस्पेंड को लोन दिया जा रहा है, योजना का अधिक से अधिक लाभ ले।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रा लाभार्थी नेमाराम बतायो के वारो बिजली रो बिल शून्य वे गयो है, साथ ही वाने सरकारी कान्यो इंडक्शन कुकर दियो गयो।
3: मैं नेमाराम प्रजापत शिव नगर पाली, मैंने पीएम सौर घर ऊर्जा का सोलर प्लांट लगाया, जिसमें मेरे को पहले 12,000 लाइट का बिल आता था, अब एक साल से मुझे 0% बिल आता है और 71,000 की सब्सिडी मिली और आज मुझे सोलर प्लांट का ये सोलर कूलर भी मिला है। जनता से आह्वान करूंगा आप इस सोलर ऊर्जा लगाएं।
0: संत रविदास जी री 650वीं जयंती रे मौके प्रदेश माए आज समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा री शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS स्टेडियम सु यात्रा री शुरुआत करी। इन मौके श्री शर्मा कया के आ यात्रा संत गुरु रविदास जी रा सामाजिक समता सद्भाव और मानवता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबा रो जरियो बनेला। वणा कया के संत हमेशा समरसता रो भाव दिखावा और समाज ने दिशा देबा रो काम करियो है।
4: हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है और ये आज से नहीं सदियों से है। हम ऐसे संतों का मुनियों का महंतों का सम्मान करते हैं। मित्रों, ये भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का महापर्व है।
0: प्रदेश की पहली महिला सुरक्षा हेल्पलाइन हनुमानगढ़ माए शुरू करी गई। बीकानेर रेंजरी DIG श्वेता धनकड़ इनरी शुरुआत करी। इन दौरान वणा महिला वासु बातचीत करी। वे कया कि किणी भी भातरा उत्पीड़न और छेड़छाड़ हुबा माथे हेल्पलाइन माथे संपर्क कर तुरंत पुलिस री इमदाद हासिल करी जा सके है।
5: पूरे प्रदेश भर में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन परिसर में और जिला हनुमानगढ़ में महिलाओं से वाद संवाद किया गया और साथ में जो एक नवाचार जो स्टार्ट किया गया है वो है महिला से सेफ्टी अभियान से रिलेटेड। हमने हेल्पलाइन नंबर सभी को बताया है, वो इस नंबर पे फोन करेंगी, मिस कॉल करेंगी उनके पास वापिस में कॉल जाएगा, उनके पास कोई भी सूचना है वो फ्री होकर जो है बता सकती है पुलिस को और जहां भी वो बताएंगी उस पर कार्यवाही की जाएगी, उनका नाम और उनकी जो सूचना है गोपनीय रखें।
0: पूर्वी राजस्थान और आरे सारे रा हलकारे ऊपर कालसून नुवो परिसंचरण तंत्र बनबारा आसार है इनसु मानसून रे फेरू सक्रिय होबा और तेज बारिश होबारो अंदाजो है 710 अगस्त रे दौरान भरतपुर कोटा अजमेर और जयपुर संभागरा कुछ एक हल्का माए हल्की सु तेज बारिश वह सके है वठीने कठे कठे भारी और घटा टोप में बरस बारा आसार भी है मौसम महक मो काल 17 जिला माए बरसात रो येलो अलर्ट जारी करियो है इन बीच आज भरतपुर माए बादला छाया रिया अठे सुमारा सुही कठे कठे हल्की तो कठे तेज बरसात रो दौर चालियो नदबई भुसावर बैर और बयाना माए भी थोड़ी देर झमाझम में बरसियो डीग माए भी लाड़ा दो दुनाओ रुक रुक कर में बरस रियो है वठीने सवाई माधोपुर माए झिरमिर में बरस बासु मौसम सुहावनो वैग्यो हालांकि जल संसाधन महकमा रे मुजब इन मानसून सीजन माए हाल ताई सामान्य सु 10% कम बरसात भी है जबकि 5 जिला माए बत्तो में बरसियो वटे ही 19 जिला माए सामान्य और 17 जिला माए सामान्य सु कम में बरसियो है और अबे आखिर माए खास खबरां एक कर फेरू संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा हंगामा रे चलता आज भी कई बगत रुकनी पड़ी रिजर्व बैंक रो इन माली बरस माए जीडीपी बढ़ोतरी दर 6.7% रहबारो अंदाजो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत राजस्थान माए देश भर माए सबू 62,58,000 कास्तकारा रो नामांकन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संत रविदास रा समता सद्भावना और समरसता रा संदेश ने लोगा ताई पुगाबारी बात कही इंद्रे सागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो महा को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला नमस्कार

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, नीचे सुनिए कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

कार्यक्रम सुनिया भाया ने, खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनिया भाया ने नैना मोटा टाबरा ने आपरा दिनेश भाई तरफू घना हेतु कोडू राम राम। देखो भाया, देखो टेम टेम सारू की बदलाव आवे और आपा बदलाव देखा। आकाशवाणी नागौर में आपा देखा पहली किसान वाणी कार्यक्रम हूं तो गुरुवार रा अपनो फोन इन कार्यक्रम हूं तो और अबे जी को कार्यक्रम है जी को बुधवार रा अपने है लाइव कार्यक्रम रहे। और इन कार्यक्रम सारू मैं भैया ने कहना चाहूं कि यदि कोई किसान भैया ने खेती में जुड़ी समस्या है तो बे भाई है जी को 015-82-240-168 माते फोन कर परा आपकी समस्या का समाधान है जी को करवा सके। आपने बीचे नुतियोड़ा मेहमान पधारिया करे आया करे और बे आपकी समस्या का समाधान बताया करे। तो भैया मैं आपने एक सूचना माध्यम दवाई हाँ और एक सूचना आई है कि भाई जी को अब कार्यक्रम और खेतीबाड़ी कार्यक्रम है इन सारू फोन लाइव कार्यक्रम वेला की तकनीकी समस्या आ रही है उन सारू आवाज है जी को भाई आप तक है जी को हमारी आवाज है कम हो रही है बीच में की न की व्यवधान थोड़ा सो आ रही है। मैंने भैया मैं आपने एक बार और सूचना कर दूं कि भाई अब मानो जी को कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है जी को बुधवार रा शाम का 7:30-7:30 बजे अवेला और 7:30-7 के बीच आप हमारा कार्यक्रम आप सुनो इन मायने आप 015-82-240-168 माते फोन करोला और आपरी खेती जुड़ी समस्या है उन्हारो आपरे समाधान विशेषज्ञ द्वारा कर जाओला। भैया देखा अबार तो आपने खेती में है जी को काम चाले खरीबरी फसला उन्हीं खपतवार और उन्हों नियंत्रण

0: बिल्कुल, जिकी मूंग है, मोठ है, गंवार है, जवार है, छवड़ा है, बाजरी है, ये सब खेती हो रही है। और इन खेती के मायने सब है ठीक चल रही है। और इन मायने कई भाई निनाण में लागे है, कई भाई है जी को उड़ीक करे, और बिन साथ साथ है कई भाई है जी को छिड़काव भी कर रही है। तो उन और भी है जी को भाई ने विशेष ध्यान रखना कि भाई अपन जी को छिड़काव करा, तो उन सारो अपन काई करना है, बिनो किन काई करना है। तो भाभी जानकारी आपने दबाला। तो भैया मैं आपने बताया कि आज अपना फोन इन कार्यक्रम है, किसान भैया फोन आवेला और आना शुरू हो गया है। तो आपने बीच नुतेड़ा मेहमान आयोड़ा है श्री मनीष जी जाजरा, कृषि विज्ञान केंद्र अटेशन से। तो मनीष जी आपरो खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम। तो मनीष जी मैं आपने बताऊं कि अपने जी को कार्यक्रम खेती बाड़ी है उन सारू भाया तई आज बुधवार रा फोन इन कार्यक्रम अब राखी जिला। तो आपरी बातचीत भाया हुई और भाई आपका सवाल भी पूछी, बीहू पहले अपन बात करा हतई करा कि भाई अबार जी की खरीफ री फसल बायड़ी है, उनमें खरपतवार सारू किसान भाई काई काई करना चाहिए।
1: किसान भाइयों ने खरपतवार नियंत्रण करना है तो सबसे पहले जो खरपतवार उनके हर साल समस्या आती है उसके लिए किसान भाई पहले से तैयार रहे। किसान भाइयों को एक दो बार गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए, उससे क्या उस खरपतवार की जो जड़ है या उसका जो बीज है वो सीधे जमीन से बाहर आएंगे, तो वो या तो किसी पशु के द्वारा खा लिए जाएंगे या फिर वो इतने गर्मी के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। तो उससे खरपतवार की काफी समस्या है किसान भाइयों की, वो कम हो जाएगी।
0: देखा एक फोन आ रही है भाई रो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो, हाँ सर, आप नाम बताओ, गांव का नाम बताओ। हाँ,
1: हेलो,
0: राम राम सा,
1: राम राम सर। मारो
0: आप नाम बताओ, गांव का नाम बताओ। हाँ
1: गांव है फिरोज,
0: सर,
1: नाम है नाथा राम जी।
0: हाँ बिल्कुल सर, आप बताओ, आप रहे अपना विशेष गाइड है, कहीं पूछनी चाहो आप।
1: हमारे माता सा आज अमरूद भर रहे है, अमरूद के फल आज थोड़ा पटर लगे कहीं बात है।
0: तो मनीष जी वो अमृत बर्ड है तो उन्हें
1: भाई साहब, हाँ, आपके अमरूद कत्ता साल को पौधो है गो? से बोला था हाँ, अमरूद ने लगाया ने कत्ता साल है आप?
0: अमरूद लगे ने 2-3 साल हुई है, फूल
1: अच्छा, 2-3 साल हुई। कत्ता फूल आवे भी के? हाँ,
0: टाउन रुका ही है, अपने फूल लगा छोटा छोटा लागत है।
1: तो बे बड़ा बन जाए फल अमरूद में। एक ध्यान रखना कि साल में 3 बार फल फूल आया करे, तो आपा ने साल में सिर्फ एक ही बार फूल लेना है। अगर 3 बार आपा फल लेवा कोशिश करा तो वो आपा को पौधो है जो को कमजोर है जाए। तो जी टाइम बिना मौसम अगर फूल आवे, जी टाइम अपन फल नहीं लेना है, तो बे फूला ने पूरा ने तोड़ देना है।
0: हाँ ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ, और अबार भी के महीने आप बारिश भी हो रही है आपके, तो भी के महीने चारों तरफ आप गोबर की खाद ने को 2-3 साल पुरानी सड़ोड़ी है और बिन वापस पानी
0: हाँ
1: पिलाओ, बिन भोजन खुराक दो, तो वो अपना आप बड़ा हो जाएगा।
0: सब जान दे। तो देखो किसान भाई आपकी समस्या आप ही पूर्ति करे। मैं भयाना और बता दूं एक बार, कभी 015-82-240-161 आज बुधवार रा अपने अब खेती बाड़ी कार्यक्रम में है, विशेषज्ञ पधारेला और आपकी समस्या का समाधान करेला। तो देखो फोन आई गो है, कहता ही हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, राम राम सा, आप नाम बताओ, गांव को नाम
1: नमस्कार
0: बताओ।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ निजामुद्दीन पहले बोलो, गुतेरा साहब
0: हाँ सा, आपकी समस्या बताओ।
1: समस्या तो गंवार भाई उड़ा है, तो एक तो पाल बना है, एक तो ऐसे जोड़ा पड़ा है पन बोंटा। हाँ, आप जो को खराब योड़ो बूंटा ने भी ने एक बार उखाड़ देखो भी कि जमीन के
0: हाँ
1: बराबर में अगर कालो पड़ रहे हो ना।
0: हाँ पड़े गाड़ो पड़े
1: हाँ,
0: साहब,
1: तो
0: वो काट दे।
1: बिग मैंने कॉलर रोट जका ना पर जड़ गलन भी कह सका
0: हाँ बिल्कुल
1: बी
0: हाँ
1: की समस्या है। बी के लिए आप टेबू कोनाजोल आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाए आप स्प्रे कर दो, तो बस समस्या आपके पूरी खत्म हो जाए। और
0: कोई

0: घंटा पूरा मत धोने से पूरा हो सके।
1: हाँ वह धीरे धीरे फैल भी सके, आप अगर ज्यादा लाग रही है आपने, अगर दो चार पौधा है तो कोई स्प्रे की जरूरी को नहीं, अगर ज्यादा पौधा आपके खराब वे खेत में तो आप टेबोकोनाजोल नामू दवाई आवे भी ना आधा ml प्रति लीटर पानी में मिला और आप खेत में स्प्रे कर दो, आपके बीमारी रुक जाए और फाल फूल फिर स्टार्ट हो जाए।
0: पालभूल की दवाई थोड़ी आसार।
1: हाँ फाल फूल के लिए आप अभी छिड़कने की जरूरत नहीं है, फाल फूल आ जाएंगे आपके उसमें, अभी समय से आपके बीमारी की है, बीमारी रुकते ही आप में फाल फूल आ जाएगा।
0: एक सवाल और है साहब, तो
1: हाँ सर
0: वेजड़ियां जैसी होगी है तो,
1: क्या सर?
2: खेजड़े
0: हाँ खेजड़ियां, हाँ
1: हाँ
2: मैं सूखी
0: हाँ
1: तो खेजड़ियां आपके पहली नई खेजड़ी है या काफी पुरानी खेजड़ियां हैं?
0: नहीं पूरा नहीं साहब,
1: हाँ तो अगर पुरानी खेजड़ियां हैं तो बीच के महीने कहीं जड़ के महीने एक बीमारी लाग रही है आजकल, तो अगर खेजड़ी के चारों तरफ आप थोड़ो घेरो गड्ढो बना और बीच के महीने कार्बेंडाजिम दवाई आवे बा पानी के महीने मिला
0: कार्बन
1: और बिन फूल पानी पिलाओ तो बा दवाई भी पानी के साथ साथ जड़ में जाए तो वो आपके बीमारी ठीक हो जाए।
0: डाइऑक्साइड।
2: तो देखो आप समस्या समाधान करियो और अब देखो सुनो काम की बात।
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: तो अब हम बात करा। हाँ मनीष जी, अपने खरीफ की जी की फसल है उनमें खरपतवार री तो देखो गंवार री बात तो बार भाई करी ही कि भाई जड़ गलन रोग है या छाछे रोग है या कहीं घनी बांतरा रोग हो जाए, एक बरसात की कमी है ही, मैंने फिर भी अपन देखा कई बार हुआ। देखो फोन आ रही है, भाई बड़ा सजग है, अपन हाथ ही करे। राम राम सा, हेलो राम राम सा, लग रही है कोई लाइन में मिस्टेक हुई है। हेलो हेलो हेलो,
4: हेलो
2: हाँ राम राम सा,
4: सर, राम राम।
2: आप लोग नाम
4: कार्यक्रम
2: बताओ,
4: में
2: नाम बताओ, गांव बताओ।
4: अनवर हुसैन बी आर मिर्जा कॉलेज से बोल रहा हूँ
2: हाँ सर बताइए।
4: सर। लाल टमाटर उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
2: बताओ सर।
4: हाँ सर, और खाद के बारे में बता दें।
1: हाँ अगर लाल टमाटर आप कितने के एरिया में उगाओगे?
4: हाँ
2: बीघा 2 बीघा घरे खेती में।
4: सर, छोटा तौर पर ही लगाना।
1: हाँ तो बीघे के लिए आप पहली जमीन ने 2-3 बार खोदो,
4: अच्छा
1: यानी ऊपर ऊपर बढ़िया,
4: हाँ
1: और बीघे के बाद के महीने में आप गोबर की खाद मिलाओ।
4: अच्छा पहले से,
1: हाँ सूखी
4: हाँ
1: अपने 2-3 साल पुरानी एकदम सड़ी हुई खाद है आपकी, वो गोबर की खाद उसमें मिलाओ
4: अच्छा
1: और
4: अच्छा
1: उसके बाद में आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे पपी आपके टमाटर की पौध तैयार है, तो वो वहां से आके आप संपर्क कर लीजिए, वहां टमाटर की पौध आपको मिल जाएगी।
4: अट्ठासन
1: हाँ 88 88
4: सही है।
2: तो अब हम बात करें हाँ रासायनिक खाद की और फसलों की खरपतवार की, तो अब भाई लोग है जी को छिड़काव कर रही है मूंगा का स्प्रे कर रही है, तो विशेष कई सावधानी रखनी चाहिए?
1: देखो किसान भाइया ने सबों पहली अगर

0: खेत में पानी की कमी है, बारिश हो रही को नहीं है, फिर भी अगर किसान भाई लगातार दवाइयां को स्प्रे करे तो बिक महीने फसल हो सके जल्दी मर जाए, क्योंकि बारिश का आसार हाल है को नहीं। अगर बारिश हो सके 5-10 दिन लेट हुई तो अपन दवाई छिड़कते ही फिर पौधे को पानी ज्यादा चाहिए, और बारिश हुई नहीं तो
1: तो एक
0: अपनी
1: फोन आ रही है
0: फसल।
1: भाई को, मैं अपने बीच ही रोक रही हूँ सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो फोन कोई कट गया है, पाचा जुड़ जाए भाई तो बैंक समस्या का समाधान करावा। हाँ सही बात है कि भाई बारिश नहीं हो रही है उन कारणों जिको भाई के लोग कहीं छिड़काव कर देवे तो फसल झड़ भी जाए, नष्ट भी जाए, बढ़ जाए। तो विशेष थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई इनको छिड़काव थोड़ा बारिश के टाइम हुए तो ठीक रहे।
0: अगर खेत में बढ़िया नमी है आपके तो आप खेत में स्प्रे कर सको, अगर बारिश टाइम टू टाइम हुई तो आपकी फसल अपना आप बढ़ी।
1: सही बात है। हेलो
2: हेलो। हाँ डॉक्टर अहमद,
1: हाँ राम राम सर, आप रो नाम बताओ और गांव रो नाम बताओ सर।
2: गांव डॉक्टर
1: हाँ कारण तो नाम कहीं आप रो।
2: मरना ओम प्रकाश डॉक्टर।
1: हाँ ओम जी, तो आप रे कहीं समस्या बताओ सर।
2: डॉक्टर अनार को पौधो है, दो तीन साल होगा, फूल फूल अगर ना जड़े अनार कौन बने। हाँ
1: बताओ सर।
0: देखो आपके पौधे में अगले बार से फल और फूल दोनों ही होने आने लग जाएंगे। अभी पौधा आपका छोटा है तो छोटी उम्र में अगर अपन फल भी लेंगे तो पौधा कमजोर हो जाएगा। पहले पौधे को आप मजबूत बनने दो। अभी जितने
2: अच्छा
0: भी
2: फिर
0: आपके फूल आए उनको आप पहले से तोड़ दिया करो ताकि पौधा बड़ा हष्ट पुष्ट हो जाए और बाद में अपने को अच्छा उत्पादन दे, अच्छे उसके फल फूल लगे।
2: अनार बनती है लेकिन पनपे को नहीं।
0: हाँ अभी आपका पौधा छोटा है सर।
2: ओके
0: हाँ अभी शुरुआत में अपने वे जगह फूल आवे भी के मैंने फूल तोड़ देना है, नहीं तो आपको पौधो कमजोर हो जाए और बाद के महीने भी के महीने फल को ना आवे।
1: सही बात है। पौधो यदि कमजोर रही तो बिनी है जिको ग्रोथ हुए कोनी, बिनी फल लागे कोनी। यदि पौधो समय सारू पर देखो पन्ने पर तैयार हो जाए जन बढ़िया रहे। अपन बात करें रासायनिक खाद दुष्परिणाम री, देखो भयाना फोन आ रही है। हेलो हेलो हेलो राम राम सा, कट गया सा फोन। तो आपन की बात चल ही फसलों की खाद छिड़काव की छिड़कन की, तो कई बार कई दुर्घटना भी घटित हो जाए। कई भाई लोग है जिनको छिड़काव करे और सावधानी नहीं रखे जाना, तो कहीं कहीं विशेष सावधानी रखनी चाहिए।
0: देखो अगर चाहे खाद हो चाहे कोई भी दवाई हो, किसान भाई अगर खेत में स्प्रे करता है तो बीरों पहली भी ने एक तो मुंडा के मास्क बांधना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन स्प्रे करते हैं तो सीधा जो दवाई है वो आपके सांस के थ्रू सीधा मुंह में जाती है, आपके शरीर में जाती है। तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण एक इसके द्वारा भी दवाई का अंदर जाना है, और उसके साथ साथ अपने शरीर में जितने बाल है। हाँ
1: हेलो हेलो हेलो, किसान भाई को फोन आ रही है और बीच में कटे भी है, कोई लाइन में मिस्टेक आ रही है उन सारू। कई बार फोन आ पाते फूक तो हुए को नहीं, फिर भी जी मैं एक बार और बता। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ सर, आप रो नाम बताओ और गांव रो नाम बताओ।
2: नाम लक्ष्मण है, गांव भूपा है।
1: हाँ लक्ष्मण भाई यार, आपने कहीं समस्या है खेती में जुड़ी बताओ।
2: एक अन्ना रुपए 4-5 साल रहे, अन्ना रुपए लाल गोनी हुए। हाँ
1: तो आपने बार बताई भी ही अनार लाल कोने में लागे तो है अनार।
2: गणे लगे।
0: देखो अनार में भी साल में 3 बार फल आता है, आप भी देखता हो लाग भी में साल में 3 बार फूल आवे।
2: हाँ हाँ
0: तो आपने एक तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि 2 बार का जगह फूल है वे पूरा का पूरा तोड़ना है, 1 बार का फूल लेना आपने,
2: हाँ
0: और जितना गुच्छा में फूल आ रहा है बेक महीनों बीच में 3-4 फूल तोड़ दो, और एक जगह गुच्छा के महीने अब 2-3 फूल ही एक जगह रखो,
2: ठीक
0: तो बेने पूरा खुराक मिली और आपको फल बिल्कुल अपना आप लाल हो जाएगा।
1: हेलो। हाँ तो देखो किसान भाई, आपरी समस्या रखे है आ रही है। बार बात करा खेती की और सावधानी की बात करे हाँ, तो कई बार एक घटना और आपके भाई बीमारियां सारू जावे, तो विशेष मास्क लगाऊं वो कहीं रुक जावे।
0: हाँ, मास्क को जितने भी आपांगे दवाई है वह दवाई बाहर ही रुक जाए, और आपांगे अगर शरीर के ऊपर भी वे बूंद गिर रही है तो वो शरीर उस सीधी अंदर जा रही है, तो उसके लिए भी किसान भाई आजकल पूरा किट आता है, जो किसान भाई वो किट पहन के ही अपने खेत में इनका स्प्रे करे। अपन फसल धान अपन ऑर्गेनिक जैविक खा लेते हैं।
1: हेलो। राम
2: हाँ जी, राम राम सा।
1: राम सर, राम राम सर, आप रो नाम बताओ और गांव रो नाम बताओ सर।
2: गांव को नाम नेमड़ी है सा, नाम अश्विन कुमार है सा।
1: अश्विन जी, नीमड़ी चांदा होता हूँ या नीमड़ी डेगाना कनु?
2: देखा ना करना।
1: डेगाना कनु है ना। तो आप रो
2: हाँ,
1: काई समस्या है खेती ने जुड़ी बताओ।
2: खेती से संबंधित ऐसा अपना नार का पौधा जैसा एकदम सही है सर,
1: काई से पाँच छो बताओ।
2: 10 पौधा नार का है सर,
1: हाँ 10 पौधा अनार का, ठीक है।
2: ये एकदम सही है सर। आज 3 सालों मेहनत करी, एक नींबू को पौधो वो जल गया सर।
1: नींबू पौधे जलने को कारण बताओ सर।
0: हाँ, अचानक जल गया या धीरे धीरे ऊपर से जला
2: नहीं, धीरे
0: गया?
2: धीरे जलेगा सर। पत्तियां, पहले पत्तियां पड़ी
0: हाँ, पहले ऊपर
2: और
0: जलनो स्टार्ट हुए या पूरा पौधो एक साथ ही जल गो?
2: ऊपर सा।
0: तो भी के मैंने देखो थोड़ो ध्यान रखना आपने पहले, कि जी जी से आप ऊपर पौधो जल रहे हो तो वो
2: अच्छा,
0: पौधा थोड़ा जहाँ जटू जल रही हो बट थोड़ो नीचे भी शाखा ने काटनी अपने, ताकि वो रोग हो जो को पूरे आगे पौधा में को नहीं फैलतो। और
1: आ
0: अब
1: चूक होगी आप,
2: हाँ जी,
1: कोई नहीं, अब बार बरसात रो मौसम है और नई
2: हाँ
1: जी के
2: जी
1: पौधे आ लगाओ आप,
2: ठीक है सर, ठीक
1: ठीक है। तो आप हम बात कर रहे और कि भाई खरपतवार की, तो मूंग की खेती भी चले और मूंग के स्प्रे की चले, सावधानी छोटी मोटी सावधानी। देखो भैया की आदत रहे, छिड़काव करता करता आपके बीड़ी को सूट कहीं खींच लेवे, कई बार हाथ धोवे थोड़ा धोए पर रोटी जीम लेवे, तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जी की ये नुकसान को कारण बन जाए।
0: ये जेर को पूरा ध्यान रखना है सर। किसान भाई जबकि दुआई दुकानदार कहे के मैंने आपने गोलन मिलानी है, तो किसान भाई भी ने हाथों गोलन भी टंकी के मैंने मिला जाए, तो आप बहुत मोटी गलती कर रहे हैं किसान भाई।
1: बिल्कुल। अब यार कई बार किसान भाई है देखो लोभ ही जीवड़ो है, जिसको लोभ कर लेवे क्या बे कहे नाखनी तेर की हल्ली नाक दियो की हल्लो फायदो हुई, मन देखो दवाया जेर की हल्ली नाखनो मने तो फायदो कौन दिखे, तो कितनी मात्रा
0: हाँ,
1: भी दवाया फिक्स
0: हाँ
1: रहे।
0: जितनी मात्रा आपको कोई बताता है वैज्ञानिक या किसी आप अधिकारी के पास जाते हो, कृषि विभाग से जुड़े हुए आदमी के पास, जो मात्रा उसने बताई उतनी ही मात्रा डालनी है, वो काम उतना ही करेगी। आप अगर किसान भाई ये सोच के डालता है कि मैं थोड़ी ज्यादा डाल दूं ज्यादा अपने को लाभ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है।
1: सही है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। हाँ आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? कोई नहीं, आवाज को नहीं आ रही। अब हम बात करें हाँ इनकी सावधानी की और खरपतवार की, तो कम छिड़काव किन भांत करे और फसल ने फायदा भी जाए, और कम छिड़काव करे तो कितो काई छिड़काव करना चाहिए अपने मूंग की बात करा या गंवार की करा तो।
0: देखो किसान भाई ने जद आपके खेत में लागे कि मेरे हे हकीकत में मेरे लट लग गई है, या फसल की जड़ खराब हो रही है, या पत्तियों पर धब्बे हैं, कुछ समस्या उसको लग रही है, तो ही स्प्रे करे। अपने पड़ोसी को देख के कभी भी स्प्रे नहीं करे। ऐसा नहीं है कि किसान ज्यादा दवाई देगा तो उसके खेत में ज्यादा उत्पादन होगा, ऐसे कहीं संभव नहीं है।
1: सही बात है बिल्कुल। देखो होड़ा होड़ नहीं करनी है अपने, अपना अपना खेत के हिसाब में चलना, और आई दिमाग में रखनी है भैया कि कम जेर है जिसको काम में लेना है और बढ़िया जैविक खेती करनी, उन सारू अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और खेती को स्वास्थ्य है वो घना ठीक
0: घना
1: रहेगा।
0: ठीक रहे।
1: तो आ तो है अरबी के बीच में देखो एक फोन आ रही है भैया को। हेलो हेलो। हाँ तो कोई कारण देखो फोन कट रही है। हेलो

0: श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: तो देखो आ सूचना बयान दी है और साथ ही फोन आ रही है। हेलो हेलो।
2: हाँ सर, राम राम सा।
1: राम राम सा, राम राम सा, आप नाम बताओ।
2: बंशीलाल सर, गांव सलूटिया से बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ बंशीलाल जी, बताओ आपने काई समस्या है खेती में जुड़ी जुड़ी।
2: समस्या ऐसा, हमारे मूंगफली भी जुड़ी है, जो थोड़ी दूर पे माए मूंगफली पौधो हमारे खड़ी है बदे को।
1: मूंगफली बद कौन रही है, बदवार कौन कर रही है ना।
2: कुछ जगह
1: में
2: है, बहुत हमारी खड़ी है।
1: हाँ कुछ जगह में ठीक
3: है। तो बंसीलाल जी।
2: हाँ सर नमस्ते।
3: हाँ आपा के जगह खेत के मैंने मूंगफली की बटवार मूंगफली की बटवार को नो रही है।
2: मूंगफली बहुत हमारी के साथ थोड़ी दूर में।
3: हाँ तो बिखे मैंने आप पत्तियां पर देखो कोई माच्छर की समस्या तो कोनी, माच्छर तो कोनी बिखे मैंने। आपके गोजा की प्रॉब्लम तो कोनी सा, समस्या कोनी लटकी।
2: नहीं नहीं कौन गोजे कौन।
3: हाँ तो बिक मैंने आप NPK आवे एक NPK आप 100 लीटर पानी के मायने लगभग 2 किलो मिला और आप छिड़काव करो भी जगह पर अपना बढ़वार कर जाए पौधा।
2: पाउडर या लिक्विड।
3: हाँ पाउडर ही आवे जो को पानी में इन्हें गोल आप और खेत में स्प्रे कर दो।
2: दो दो किलो।
3: हाँ 1.5-2 किलो ले लो आप 100 लीटर पानी में।
2: ठीक
1: है। तो देखो भाई, लोग किसान खेती तरह तरह री करे है और भांति भांति री अपने है जी को समस्या भी आवे। तो आगे आप फोन आ रही है। हेलो हेलो, राम राम सा। तो देखो कई बार कई है जी को फोन री लाइन है जी को बिंजी रह जावे और उन सारू कई भाई रा फोन कट जावे, फिर भी भाई लोग है अपना तक पुगे और बात करे। अब भाई ने देखो सूचना के माध्यम दो बार बता दियो कि भाई अपनो फोन इन कार्यक्रम है जी को अब गुरुवार जगह बुधवार रो होने लाग्यो और भाई लोग फोन कर रही है आपकी समस्या रो समाधान करवा रही है। मन लागे देखो एक फोन आयो है। हेलो हेलो।
4: मोहित बोल रहा हूँ मैं।
1: हाँ राम राम साहब, आपका नाम बताओ।
4: मोहित।
1: मोहित किस जगह बोलो भाई।
4: मैं
1: सरूं बोल रहे हो। हाँ तो आप कहीं खेती में जुड़ी कहीं समस्या बताओ।
4: मारे अंबे का पौधा
1: कितना लागे डा।
4: एक दो साल का और बल गया।
1: लगे कौन नहीं बैठे ना।
3: आपके जमीन में नीचे 1-2 मीटर रूपी के नीचे गहराई में कोई कठोर परत तो कौनी साहब। एक बार है ना आप थोड़ो गड्ढो है वो थोड़ो गहरो खोदो, हो सके भी कि जड़ भी गहराई में जावे कोनी और बटू वो तो जड़ जावे। थोड़ी सी जगह बटू छोड़ आप दूसरी जगह लगाओ पौधों बिल्कुल लाग जाए आपके, कोई दिक्कत को ना हो।
4: हाँ
3: गड्ढा थोड़ा गहरा जिस समय लगाओ आप भी टाइम थोड़ो उंडो खाडो खोद लगाओ।
1: ठीक है सर। देखो एक तो कहीं है अपने मनीष जी जिकी जमीन है आ रेतीली है, मेन सर जी बात करी धोरा धरती है उन्हें उठे तो देखो बट खेजड़ी हुए है तो आम

0: अगर आपके क्षेत्र में, तो किसान भाई अपने खेत में निराई गुड़ाई करे, जितने भी खरपतवार है उन खरपतवारों को निकाल दे, और जैसे ही अगली बारिश हो उस समय अगर आपको महसूस हो तो उसमें आप खाद दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। अगर जरूरत नहीं है
1: तो
0: तो कोई स्प्रे की जरूरत तो नहीं, आपके बढ़िया उत्पादन हो, बढ़िया फल फूल आए।
1: किसान भैया, आप सुनी आ खेतीबाड़ी कार्यक्रम जिको फोन इन कार्यक्रम हो, और आज मां के बुधवार अब चालू है, तो इन सागरी टाइम कुंतोड़ो पूरो हुए। आप रे दिनेश भाई ने दिरौसी करा, राम राम।
0: राम राम सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। डीजे सुनिए, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: बदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
1: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओं, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता।
2: जी
1: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया। कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
2: बिल्कुल सही कहा जी। अब तो लोग क्या, विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो ये है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देख कर ही उठते हैं।
2: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल सकता।
1: जी वो तो है,
2: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: सही कहा आपने, लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है
1: जी।
0: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे
1: जी।
0: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
1: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा एक महीने बाद है, विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है, मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए अजीत जी क्या होगा?
0: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
1: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं,
0: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
1: देखते देखते एक घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
0: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
1: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
0: और नोटिफिकेशन भी बंद।
1: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
0: क्या बोलेगा,
1: मुझे भी देख लो।
0: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
1: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
0: वो कैसे?
1: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहां आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं, इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
0: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
1: जी,
0: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
1: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
0: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
1: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
0: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं, और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
1: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
0: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
1: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
1: नई जानकारी के साथ।
0: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर एक या दो पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है परीक्षा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है, जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
2: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
3: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
4: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
3: जी महाराज।
5: महाराज
4: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
5: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
4: दीवान साहब।
5: महाराज,
4: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
5: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
4: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
5: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
2: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत, अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आँखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
6: ये मैंने दिया पास। अरे दौड़ो दौड़ो और तेज दौड़ो।
7: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
6: लगता है खुद ही गोल करके मानेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
2: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिक

0: बालकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
1: आज खेल में बड़ा मजा,
2: बहुत मजा आ गया, गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
3: हाँ, गोल हो गया।
0: कि तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
4: ए, इधर क्या देख रहे हो?
5: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
6: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
2: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
4: चलो,
5: लेकिन
6: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
7: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
5: हाँ, ठीक है,
7: कोशिश करते
5: हैं।
0: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
5: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
7: जी बाबा।
5: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
7: तो क्या इनाम देते हो?
5: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे, पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है। राज दरबार सजाया गया।
8: पूरा एक महीना हो गया है, आज फैसला हो।
9: तुम्हें क्या लगता है?
8: महाराज आ रहे हैं।
9: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
5: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
8: सही बात है।
5: उसका संकल्प दृढ़ है, वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
8: बिल्कुल सही कहा,
5: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
0: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
8: अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम करेगा।
0: देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ सा को बधाई दे रहे थे।
1: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
2: महाराज की
10: जय हो,
2: महाराज की
10: जय हो,
2: महाराज की
10: जय हो,
2: महाराज की
10: जय हो।
0: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
11: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।

0: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
1: एक जंगल था। उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था। वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था।

उड़कर जाता, सारी खबरें लेकर आता, काव काव कर गाना गाता, सबके मन को

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही कौवे ने काव काव कर सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोला,
1: सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो।
0: सब पक्षियों ने कौवे की बात मान ली। अब कौवा बहुत थक गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूं। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा, लेकिन सुनो भाई,

0: सुनो भाइयों सुनो।
1: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते, हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
0: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
1: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं, तुम हमारी चिंता न करो।
2: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
0: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
1: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ, हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
1: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
2: कबूतरों ने ऐसा ही किया, सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
0: चूहे भाई, चूहे भाई, शिकारी के जाल में फंस गया है।
3: कहाँ है मेरा मित्र? मुझे अभी उसके पास ले चलो।
0: चूहे भाई, वो देखो, वहाँ सामने वो एक जाल में फंसा हुआ है, उसके साथ ही कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
3: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले, मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: चलो
3: चलो चलो कौवे
0: चलो,
3: भाई
0: चलो,
3: चलो,
0: चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
1: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो, शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
3: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया, फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया। कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल है। रात्रि के 8 बजे कहीं कुछ अब हम आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर ढाई घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी कर्मचारियों की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉक्टर एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है।

और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते ना देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

0: सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे, हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM मिल 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मय चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गौरवंद।

0: Every German program should be saying boyani, boyani, topiani, chotani, motani, urtani, bedani, jimtani, shibani, apri, kokiri, or hogi.
1: Kalyari, or utana, utana.
0: Rom, rom, sha. Hey, jaguluri.
1: Atata.
0: Hey, gai, tu aaj molo molo gana gai ye dhare.
1: Oh, pacha manata, or she laad, buta rai tu, tata.
0: Oh, oh, he laad ye tu, dhari kaki haake jai, dhari sham, di kaya koni ki.
1: Ita ya, maadle liya, dhavaya li me.
0: Acha, maadle या दवाई ले वजन तू टेम से ली गया
1: हां ले ले टाटा
0: ए बेचारी
1: हां टाटा
0: अभी तो एक बेटा थोड़ो मुंशम बिजली है
1: सही बात है
0: ए झंडा छिड़को वजन देख माजरे पैदा हो गया
1: सही है
0: ए माजरे पैदा होता है जो बीमारियां करता है
1: सही बात है
0: ए क्या कहीं बीमारियां होती है तुम मुझको बता सकता हो कहीं
1: हां मैं बताऊं टाटा दे तो बार बदलता मौसम में टाई अपन आपका स्वास्थ्य तो ध्यान रखना पड़ी
0: आजा
1: ए मैं देखो चला थे टाई वे मक्की मच्छर और फिड़कला हो जावे ना
0: हां हुए
1: बे अपन थचावे थटन पड़ा अपन
0: हाय कौन भाई
1: तो एक तीन चार बातें मैं बताऊं जैसा सिर्फ ध्यान रखना है
0: अजिया
1: नहीं माला जी हम बीमार हो जाओला
0: हाउ हाउ
1: देखो आप जो तुले में तेरी पानी भरी चोरा ठंडा में
0: हाँ
1: तो मैं थली तो मैंने
0: अजिया
1: ओ मैं माने कोई बढ़िया तेल ना आगे पेट्रोल
0: अजिया
1: और ना ध्यान रखना ऑर्डर पत्रो दाबो और सुनो
0: आज सही है बेटा हाउ जानी हड्डी
1: तू तो इतना डटी
0: आज अबार मौसम जाए लो माजिया को भाई तावे तबे घर घर में देख देख लू मिले भी रहा तो सबने हाथ जोड़ के उन्होंने के हाउ जेती राखो और साफ सफाई राखो
1: हाँ तो देखो टाटा डेंगू मलेरिया चिकन दुनिया ए रोड उजावे
0: अरे राम राम राम राम ए जो जीव तो दाव जी ने डाक साहब दी का दिन और अब आप ही से काम करता हो वो फोन करता पीनी पीनी लव मार बेटा
1: ओलो सा ओलो
0: आईलो
2: हेलो राम राम काका पगन लागू
0: ए जीव तारो रोम जी थारी लोंबी उम्र घरे अन धन का भंडार भरे ओ ब्रो नो वीडियो को के नीर गांव वीडियो
2: मारवाड़ मुड़ो बोलू धर्माराम जी
0: ओ धर्माराम जी ओ
2: हाँ काका जी
0: ए गांव का नी मैं पानी कैसे हो गये हो
2: पानी तो काका जी पहले तो सात आठ दस दिन पहले तो हुई ही हो फुल
0: ए,
2: ए अब देखो मांग कर रही हाँ
0: ए राम जी गरी देखो हवन छाई हवन बरिश तो निकली टेंशन मत करो और बताओ प्रोग्राम कैसे योग लागे धोने हो
2: ओ प्रोग्राम काका जी गणेश चौक को लागे अन्ना भी मातो घर का पूरा परिवार सुना आप प्रोग्राम बे सिरमी चैनल एर मातो याद ही करता ही रहा
0: अरे वाइस आवाज ने काको एक सवाल करे उसका जवाब बिनोगे कहीं
2: अब देखो काका जी आ जाए
0: ए साले रो सारो ए साले रो सारो बीरो डाओ कान कालो
2: अरे भगवान काका जी एड़ तो मने आवे ही कोनी
0: ए हुरु बीरे भांजेरी बुआ थाने काई लागी

0: अंजारी बुआ
1: ए बताओ ए जगलूरी
2: हाँ टाटा
1: ए भाई तो हार गए तुम कहीं के उठाओ
2: माँ बीनड़ी लागी बीनड़ी
1: ए गिरी बीनड़ी
2: मारे
0: बीनड़ी वे जगलू और केला
2: हेलो
0: हाँ हेलो राम राम डगलू
2: राम राम धर्मोजी पटेल आटो
0: ओ बड़ा खुशी रहो लंबी उम्र वे आपरी
2: बहुत आई हाल साल है मुंडवा में
0: बहुत मुंडवा हाल साल बहुत बढ़िया है मैं मौसम ने उड़ी का बरसात ने उड़ी का
2: ढनाई आई है चिंता मत करो थे ढनाई आई बरसात तो
0: बरसात तो देखो उड़ी का पूरा
2: उड़ी का उठाई हो आज आई हो तो भगवान के हाथ में अपन थोड़ी है
0: हाँ यूं आई बात है
2: अपन ना वहाँ बच्चे ठेक चाल साथ ही
0: आई बात है और बार टाटी जी कहीं करे
2: और टाटी तो बार ठे जावे आधा ठेठ में नीना टल्ली और आधा मैं बटेरी
0: गाय पीछा रे बारो लावे कौन लावे काकी जी
2: लावे मैं ही लाऊं साथे मार साइकिल पर ला बांध लाऊं
0: अने तीन इंडिया लागी कौन लागी
2: हाल छोटी छोटी है ओ जे मैं ठाट बैठे हूँ ओ आज सुना प्रोग्राम में
0: आज भूमि जी महाराज सुनाई तो माने

0: Alexa.
1: Ei, Romjai, abro um vídeo com que nirgão vídeo.
0: काका मैं कहीं थोड़ो के बिजी हो जो को फोन कौन करीजियो मैं गांव रूण बोलू फखरुद्दीन खोकर
1: आओ हो फखरुद्दीन जी सलाम अलैकुम
0: वालेकुम सलाम और राम राम
1: ए क्या नो रूण में शगला बजो
0: रूण में तो बढ़िया है पर मैं किसान है जगह थाने ट्राए के खेती वे फसल छोकी वे जना तो रेवे जीव हो रो नि मानो जीव है दो रो
1: अरे राम जी मालिक माते नेचो राखो
0: अरे नेचो तो रखे हो पर गाणो गमाई वे पचे काई मतलब रे यो टेम बरस जावे इंदर राजा तो बजावा बाजा
1: अरे बाजी टेंशन मत करो इंद्र राजा बरिशी सावन छायो छे चिंता मत करो छे
0: तो करनी पड़े यो खेती एक जुओ है न माजे का जुआ में के तो अन्ने इनके अन्ने भेजे हुए
1: अरे नहीं यार टेंशन मत करो और बताओ गांव में परिवार में हगले कैसा है
0: मैं बता दियो आपने के जीते माने बरसात नहीं वेरी जीते हगले योड़ा कंफ्यूजन नर्वस योड़ा है
1: ऐसे अब एक काको सवाल करे उसका जवाब देना
0: सवाल तो माँ इंद्र राजा करा के थे मन मत कोप कर लियो कहीं हुआ जो बरसिया क्यों बने
1: ए तो भोबिया जी ने मनाओ रे आप रे जी का मालिक है बेनी याद करो दुआ करो
0: ओहो आ बात मारे हरदारी कह दी हुई माँ तो देखो के भोमिया जी रून रान बदरुद्दीन बाप जी दरगाह हेटे दोनों धर्म भाई हा और गाँव री रक्षा वास्ते बे सही दूगा गर्दन कटाई बरान
1: ओहो तो बेनो अरदास करा के छोको मैं करी
0: मेरे तो देखो भूमिया जी ने जागरण दिराई दियो बद्रुद्दीन बाप जी ने रात माँ प्रसादी कर दी हुई और अब आज गांव वाला दूसरी धार दौड़ी बात करे है काका
1: अरे वाह पोटा पोटा बड़ी टेंशन मत करो और मारे पोते बात करो ए देख लो भाई को बोलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: बद्रुद्दीन जी सलाम अलूटम टाटा हूँ
0: वालेकुम सलाम और पोता जी की करो
2: ठीक है अब थोड़ी बरसात हुआ ना तो मन जाए मारो तो
0: अरे तो बरसात ने तो मई उठी का मैं बाबो मोकलो ढकनी में ढोकलो
2: मैं तो है ना अबार अगरबत्ती करो बाबे ते
0: तैं अगरबत्ती करो मैं प्रसादी हिनी बांटा ना आज तो मानो लड्डू बांटने मन करे टावरा ने स्कूल लाला ने के प्रसाद भेजे वे
2: तो दो चार लड्डू मनी दियो बच्चे
0: अरे थाने पार्सल कराई दे मैं फोन करो
2: तो थाटा अच्छा जड़ी अच्छा मतो बुला बुला
0: वा थाने थाने जबान ने गुड़ ने शक्कर
2: आ साते लड्डू
0: हां सा जीव तारो
2: हां तई सुना प्रोग्राम में
0: माने तो बे एक चंपेकारो एक बार भजन आयो है भोमिया जी रो मैं हुनी हूँ जो मारे कने दोस्त कई बैठा है मैं अगरों भी रखा जनबे क्या फखरुद्दीन जी थोड़ो भोमिया जी रो एक भजन आयो जो को माने हुनवा दो गनी लो सा जना वो थांगन उपलब्ध है जना हुनाओ गनी
2: अबार मैं टाटा ने तेरा अबार सुनवा दे टाटा
1: ए जाऊं दे मारे बेटे मैं अगरबत्ती खाऊं
2: अच्छा है।

0: हेलो।
1: ए राम राम श्या।
0: राम राम साहब।
1: ए ओब्रो नाम भिजो को केनेर गांव भिजो।
0: मीरा नगरी मेरता सिटी हूँ, राम गोपाल।
1: आओ हो राम गोपाल जी, मीरा नगरी मेरता में क्या करता हूँ?
0: मौज करा साहब।
1: ए राम जी उली कार ले आओ, मौज करने की कोम धंधो करो कौन करो?
0: करा सा लेकिन अवार हुआ कौन सा, शरीर थोड़ो दर्द करे।
1: अच्छा शरीर दर्द करता है तो बिगड़ी नहीं, क्यों लाडू पिनाई दे?
0: हाँ बनवा सा सत्य आ जाना।
1: हाँ बीदनी को कहो लाडू पिला दी की तो शरीर सही हो जाएगा। उम्र कितनी?
0: 60
1: वर्ष का हो जाओ। ए तो हियाला में थोड़ा लाडू ठोकिया करो। ए पोता पोती जाबरिया कहीं करे हो?
0: जाबरिया तो सा नौकरी करे है दुकान में।
1: अजी भाई सेवा। ए पोता पोती?
0: पोता पोती तो पोती पड़े सा।
1: आई सेवा पानी करे? सेवा पानी करे ना ओपरी?
0: हाल हुई को नहीं सा सेवा करे जेडी।
1: आज
0: हाँ तो मैं सेवा करा मैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। ए भीगनी आका नहीं करती है?
0: नहीं सर।
1: ए थे करो कोई आका भीगनी ने?
0: कोई कौन करा सा?
1: अरे वाह प्रेम से रहो, आनंद करो सर, मारो पोतो है, थोड़ो इसे बात करो सा। ए जगलूरे।
2: हाँ टाटा।
1: ए भाई साहब हो नहीं आ के हूँ, तुमसे बात करूंगा, बोलो। हेलो
2: हेलो
0: हेलो।
2: राम राम पटेल लड्डू राम गोपाल जी।
0: कुछ रहे बात करो।
2: और मेरे साम ढाई हाल चाल है टाटा।
0: बस मेरे साम बरसात हुआ है, रिम जिम।
2: अबार हो रही है थी?
0: हाँ कोई।
2: चलो बढ़िया बात है, बरसात तो होनी चाहिए, अपन तो जरूरी है। और टाटे मेरे साम टाइम टाइम चीजें प्रसिद्ध है, बताओ मैंने।
0: मेरता की तो प्रसिद्ध एक मोई तिल्ली है, पेड़ा है।
2: हाँ मैं बेहती से मार वास्ते।
0: हाँ भेजा।
2: और मीरा भाई तो मिंदर प्रसिद्ध है, नहीं डांटे?
0: वो तो प्रसिद्ध ही है सर, मैं देखियो खाने पीने की चीजें पूछो।
2: हाँ मन तो ठावरती चीज हो। टाइम सुना प्रोग्राम में?
0: हाँ प्रोग्राम में मीरा भाई को भजन सुनना है सर।
1: ए कहेंगे भाई।
2: ए तो मीरा भाई से भजन सुनाओ।
1: ए मैं अगर बेटी खाऊं जाऊं तो मर बेटा।
2: अच्छा है।

0: Tata Ram Ram.
1: E Ram Ram Jai, Ram Ram Jai, Abranyam Vidya Kokinam Vidya.
0: Now, Sarvan Prajapat Gam Gogilao.
1: Oh, Harman Bay Gogilao, hey, Guru.
0: Khet Rukala Kaka.
1: Aaj ya khet Rukal Deo, padhi karta ho kahi?
0: Haan Kaka.
1: Hey, kiti mein padhista ho?
0: Nammi mein.
1: Aaj ya noi mein padhi raaj khet, chuti hai jana, ditwar ka khet Rukal in dhujya.
0: Haan.
1: Aur bacho thani program kaise yog lagge ho?
0: Program badhiya lage.
1: Aaj ekle hono, hagla ni hono.
0: आज तो काका खेत में आ एक ले यहाँ
1: अरे वाह एक भाई हो
0: हाँ
1: गाँव का नी में पानी कैसे हो गये हो
0: मोड़ो ये
1: राम जी गरी हमें सावन छाई हुए हमारे पोता हो रहा है थोड़ो इसको जनरल नॉलेज में बात करूँ डगलू रे
2: हाँ टाटा
1: ए भाई को बोलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो डगलू भाई राम राम
2: राम राम पटेल लाडू सरवण जी हेलो
0: हाँ
2: पटेल लाडू
0: खुशी रहो
2: ओ खेत में टाइम करो
0: खेत में गया रुकाला
2: हाँ डाया दूध देवे ठंड देवे
0: दूध देवे
2: देवे ना गई दूध होटिया तरह से तो ना
0: हाँ
2: और पटाई भी तरह थी ना
0: हाँ
2: तो मैंने एक बार बताओ ताज महल कटे
0: आगरे में
2: बिल्कुल सही है आता ही सुना प्रोग्राम में
0: सावन को गीत सुना दो
2: टाटा
1: आ बेटा
2: सावन तो ये सुननी चाहे
1: ए तू जाऊं ना मारी बेटी
2: अच्छा है

0: सगड़ा मन मोमना और सिरमी कार्यक्रम धनी थाने तो घमा गणी
1: ए ओपनी गणी गणी घुमो आबरो पीछे गिरो कोके नी
0: हाँ सा गांव तो धुंधाड़ो एन तहसील लुणी जिला जोधपुर नौ मेषा अल्लादीन धुंधाड़ी काका जी
1: खुला मूली घमो
0: ओ वालेकुम सलाम काका जी आपनी घणे मोन और लुणी बैठी नमस्कार है
1: ए आपरी बजे मैं पानी कैसी होगी
0: मैं पानी घणो नी बाढ़ धोवे सा मन मेरी धोवे बाढ़ धोवे
1: हो गरी राम जी गरी टेंशन मत
0: बिल्कुल सा भगवान खुदा ही राम जी करी सा उम्मीद माते दुनिया कायम है सा
1: ऐसे ही के उनते और अबे काका सवाल करता उसका जवाब हो समझ के करना

0: हाँ थोड़ा हल्का ही पूछो काका जी हो।
1: ए जो हल्का ऐसा है हुशिया, हुशिया कहते हैं खरगोश ने। ए तो हुशिया ने राग में लिटाई दो।
0: राग में?
1: हाँ राग में लिटाई दो।
0: मेवा तो घने दे किया, मेवा दे किया दाख। और काका जी क्या करो करे ने खरगोश जी लुटे राग।
1: अरे वाह जीव शुरू कर दिए। और बच्चों गांव में परिवार में हगले किया नहीं?
0: बढ़िया बढ़िया काका जी, हम खरगोश रहो इंडिया से याद करे तो मनी बादड़ी याद आई सा।
1: हुकुम फिरमो।
0: अपने हैंग जनावर को ऐसा क्रिकेट खेलता तो मैं कॉमेंट्री की दियो।
1: ओ करो क्या?
0: के शेर सिंह जी टॉस जीत दियो, उनके खाता में बैटिंग आई बॉलिंग करे अपने वोंदरो भाई।
1: ओ हो
0: पहली बॉल में 100 छक्को लागो ने हियाणियो के बारे हाथी दादा हमें थे जागो। के हाथी दादा थे बॉल कैच करो दबे जो मती घनी क्यों थे तो डीदरा धनी। दूसरी बॉल हवा में ऊपर छट गई, शेर सिंह जी सांस हट गई। बालू काका क्यों जोर सु हाको ने हाथी फाड़ियो आपरो बाको। बॉल बाका में आई कोनी ने शेर बन गयो जंगलो धोनी। शेर सिंह जी रो दे गयो मौन बॉल ने मिल गयो जीवन दान।
1: अरे वाह वाह जीव शुरू कर दिया ढगड़ो हुने गई तू।
0: मोटा ने पसंद आवे नहीं यार टावरों जरूर पसंद आवे ला था।
2: मन्ना
0: टटनी आई हो। हाँ
2: कौन फंगा वैसा? बोलो टटलो।
0: अरे ओ टटलो यार घना तो ना मिलियो भाई।
2: अब टाटो भाई ठेठ में मने बेच दे टाटे के साथ।
0: हाँ एक एक दिन तो देखियो तो ना हेयर में देखियो भाई आंगली पकड़ी हुई काका जी रही है मिर्ची बड़ा खा रही था।
2: सही बात है।
0: ठीक है ना जन मैं नाश्तो करा दो अंग्रेजी वाला।
2: मैं सलाम वालेकुम टाटा हूँ आप तो।
0: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई खुदा जीवता रहो जीवता रहो सही दुआ करूँ।
2: मनर जीमर छोटा लागे हो?
0: बस बिल्कुल रात हेंगो ने सौका ही लागे ना जीमर तो।
2: थे जीमर जाओ जो मल्ले चल जाओ।
0: हाँ जरूर जरूर। लूणी वाला रसगुल्ला लूणी मार गनी जे। लूणी रसगुल्ला मशहूर है। देखो ओ अमकले जोरदार अपने बंद लाओ पोट की में। और काका जी लाड गणो करे?
2: रात मन 5 रुपया देवे रोजीना।
0: काका जी ठोके पे गणो करे हाथ उबड़े गणा काका जी तो।
2: टड़े टड़े मैं टाबर आओ बदमाश आते रह जन थोड़े।
0: काका जी आज ने रोज को फते हो जाई।
2: हां टाइम सुनाओ प्रोग्राम में।
0: आज तो मैं सावन महीनो आले सावन रो सुना दो भाई।
2: टाटा
1: आब जा।
2: हां तो दी सुननी चाहे।
1: ए तू जाऊं ना मर भी जा।
2: ओ चाहे।

0: ভাই মারে বেঁচে ও তো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পিছন গো পোকা মো
1: হ্যালো ডোরম্যান
0: এই পোকা মে কই ভাই কি দে বজনি হুনা যাও তাই তো ডগলু বেটা তুম কাই চেউটাও
1: ডগলিয়ানে ফোন টন্নু হে
0: আচ্ছা ডগলিয়ানে ফোন গন্নু আরে মারা বেটা ইউ বল রেডিও স্টেশন ফোন গন্নু হে
1: এটি বাত হে টাটা
0: আই ও ओ, तो अब मेरा बेटा बता किसे बाहर का किसे टेम का कितनी बजे करे बता
1: बेटो सजला ने रेडियो स्टेशन फोन करना है डीट वाटा 12 बजे 8 बजे थे
0: आजा
1: और नंबर है 015-82-240-168
0: आए वेरी गुड थैंक यू के भैया का फोन है बेटे सुमे की कोमी में लेनी सीखे तो पाना मानजो
1: अबार बाजू हमीरा नाम आयो है रविंद्र तो
0: आए
1: मावड़ा मुंडवा आयो छोटू ठाटी तो
0: आहो
1: और जाहिल आयो प्रशांत तरुणान शिवी और दरंत तो
0: आहे
1: दवालू आयो है सीताराम जी तो
0: आहे
1: और रेलवे स्टेशन आयो रेठा तो
0: आओ हाउ ए भैया ने क्यों द्वार का फोन गड़ी गड़ी जियो
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और ढगलिया की भूमिका में थी संजय पाराशर
0: ए बेचारी
1: हाँ टाटा
0: अब जो आज की पोगा में टकनी की है वो किसका है
1: बेबन ना बेटा नहीं जीते न तुम मार जीता
0: आज की पोगा में की पछतूत की जाओ
1: असो तुम मार जीत होयल
0: अब हंदी इसलिए को मारे बीच जाओ
1: मोबाइल डो स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो हेलो डोरबेल
0: हंदी यो तो अब आप ये कोकी नीर होगी
1: डरलिया ने दिराओ से टट्टे हैं
0: रोम रोम शाय

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है।

7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिन्ह चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
3: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
4: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण

0: विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
1: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
3: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
4: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहां उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके आए 8 लोग और वहां इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
1: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों

0: ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
1: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा, जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपये और 13 पैसे पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संविधान

0: स्थानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिन्मय चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत की यह पहली पेशकश आवाज अशोक खोसला की है।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

मौसम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती से।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में आराधना फिल्म से इसे लिया गया था। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस गीत में मौसम फिल्म से इसे लिया गया था। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

उनके अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा। फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्यिक किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

विचार। अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

दिल क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यू मी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यू मी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा, सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी। मुझ में

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म मायने में इस खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल्लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी।

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

फिल्मों में अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: घर के जिया
2: वो क्यों भला।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: घर के जिया
2: वो क्यों भला।
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अभी यहीं सम्पन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद। रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अभी यहीं सम्पन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।